0: On the ground, devotees have mixed opinions on the issue.
1: अगर डीजे का किसी को तकलीफ हो रहा है, बूढ़ों को, बच्चे को, तो वो लिमिट में होना चाहिए. जितना लिमिट है उतना में बजाओ, मजा करो और अपना अपना काम करो.
2: हम लोग सब लिमिट में करते हैं, इसीलिए हम लोग को कोई कुछ नहीं बोल सकता. हम लोग बराबर टाइम में सब लिमिट में करते हैं.
3: नहीं नहीं, कॉटन वगैरह सब केयर किए मैंने. पापा सब ख्याल रखेंगे, कुछ नहीं होगा.
0: Ganesh mandals in Mumbai can use loudspeakers and amplifiers from 6 a.m. to midnight on four designated immersion days, September 15th, 18th, 19th and 25th. The High Court in August 2016 had directed the implementation of the Noise Pollution Regulation and Control Rules of 2000. According to that order, the sound limit has to be kept below 60 decibels in residential areas. With Mustafa Sheikh and Omkar Wable, Bureau Report, India Today.

0: ये बार बार आगे जा रहे थे, फिर स्लो कर लेते थे। ठीक है जी, मैं बताता हूँ कि क्या मैं मतलब लड़कियों के स्कूल मतलब उनको ठोकता फिर रहा हूँ, बाइकों को ठोकता तो पीछे से ठोक बचाई मैंने, बहुत कोशिश करी बचाने की। इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे, अब प्रोफेशनल ड्राइवर हो आपको ये नहीं पता कैसे मोड़, बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हैं। उस साइड वाली सफेद पट्टी को देखो, वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने, नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं, फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी।
1: Road accidents killed more than 1.8 lakh people in India last year, roughly 500 a day. The Gurugram hit and run is a grim reminder of the risk motorists, riders of two-wheelers face on the roads. With Arvind Ojha, Anshul Singh, Neeraj Vashisht and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.

0: And now shifting focus to the Gurugram hit and run case. The accused first deliberately hits the biker, then tries to flee. The Gurugram hit and run accused tried to escape after his arrest as well. The police have claimed that Kalyan Besla, the accused, allegedly tried to flee on the pretext of urinating. And while trying to escape, he fell and sustained minor injuries. Kalyan Besla was later taken to a hospital and was given treatment. Police then took him back into the custody. Remember, the Gurugram police have added an attempt to murder charge against the accused after analysing CCTV footage of the incident. The cops have said Kalyan Besla deliberately hit the woman biker and that his intent was to kill Sia. Cops have also said that right after the incident, Kalyan Besla switched off his mobile phone, changed locations only to escape arrest. Meanwhile, speaking exclusively to India Today, victim biker Sia has said Kalyan Besla's arrest is not enough and has also demanded strict action against him and his friends. The Gurugram police, on the other hand, have arrested the second accused in the case. The accused has been identified as Lavneesh. He was allegedly present in the car with the main accused during the incident. In fact, India Today spoke exclusively with hit-and-run victim Sia, who was injured in the incident. Let's listen in.
1: When you hear Sia, when you heard today that the person who hit you in that car has been arrested, what was your first feeling? Because he had been, he had virtually run away from the law. He was finally arrested today. What was your first feeling when you heard that he has been arrested?
2: हाँ सी मुझे मीडिया के ही सोर्सेस से पता चला एंड कि वो अरेस्ट हुए हैं एंड सी मेरा तो इतना कोई लाइक कोई शॉकिंग इतना रिएक्शन नहीं था किसी ने किसी को इंटेंशनली हिट करके और इतनी तेजी से हिट करके कि किसी की इंसान वहां पे ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी तो अगर ऐसा इंसान उस इंसिडेंट के बाद भाग जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके आती है तो ऑब्वियसली उस इंसान ने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है इसलिए उसको अरेस्ट करा है एंड अरेस्ट करना ही एक सेफ एक्शन नहीं होता दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई थिंक सो जो हुआ है एंड इसके बाद भी जब तक उनको कोई मतलब सजा नहीं मिल जाती उनको और उनके साथ के तीन साथियों को तो तब तक मैं नहीं मानूंगी कि कोई मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है
1: बट ये मुझे बताइए एंड आई विल देन कम टू योर फादर ये बताइए आज जब या उनका लॉयर कहता है नो इट वॉज सिया हु वॉज who was driving rashly, she came in the way, I had nothing to do with it, I actually tried to avoid hitting her. Kya kahenge?
2: Mujhe bahut, dekhe, hansi bhi aati hai aur mujhe bahut gussa bhi aata hai. Matlab, kaise wo ye cheez deny kar sakte hain ki unki galti nahi thi aur kaise wo apne client ko save kar sakte hain. जो आज पूरे देश भर में जो वीडियो चल रहा है कि कैसे इंटेंशनली वो मुझे फर्स्ट लेन से एकदम तेजी से अपनी गाड़ी लाके थर्ड लेन में आके मुझे इंटेंशनली हिट करके जाते हैं मैं पूरे रोड पे काफी दूरी तक घिसटते हुए जाती हूँ मतलब आज हर जगह से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ब्लेसिंग दे रहे हैं मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं एंड दूसरी जगह वो अपने क्लाइंट को कैसे सेव कर सकते हैं तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि कैसे वो जस्टिफिकेशन दे सकते हैं ये सारी मीडिया पे
0: So let's now take a look at the charges that have been pressed against the accused driver, Kalyan Besla. So the first charge is attempt to murder, which is section 109 of the BNS. And this was also the demand of the victim and her family that this should also be pressed against him. Then comes the act of endangering life of others. That's also one of the charges. Then rash driving, section 281 of the BNS. Also stalking, section 78 of the BNS, because the victim has claimed that how there were foul remarks also, which were made by the accused. And insulting a woman's modesty, section 79 of the BNS, has also been pressed against Kalyan Besla. So a viral hit and run video has now led to an arrest. In Gurugram, police have arrested the alleged driver, Kalyan Besla, from Rajasthan and booked him for attempted murder, stalking and insulting a woman's modesty. The biker, Shivani Chauhan, says that she survived a deliberate attempt on her life. My colleague Arvind Doja gets us this report.
3: 2 days after the hit and run video posted by biker Shivani Chauhan went viral, Gurugram police finally swung into action and on Tuesday arrested the car driver. Kalyan Besla was picked up from Dausa in Rajasthan and brought to Gurugram. The police have booked Besla for attempt to murder, stalking and outraging the modesty of a woman.
4: ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उसने जो टक्कर मारी है वो साइड से जानबूझ के मारी है क्योंकि ऑलरेडी उनका आर्ग्यूमेंट हो चुका था और जो पीड़ित महिला है उन्होंने भी अपने कथन में यही अंकित करवाया है कि उन्होंने जान से मारने की नीयत की. विक्टिम ने ये बोला है कि उसने कुछ कमेंट पास किया है जब वो साइड में गाड़ी चला रहे थे.
3: शिवानी चौहान, हु ऑल्सो गोज बाय द नेम सिया, ब्रोक हर साइलेंस. शिवानी सेज शी सर्वाइव a bit on her life but will take some time to overcome the trauma.
2: Hum bar bar bike tez kar rahe the, slow kar rahe the aur hum inko pinch kar rahe the. Wo to I think so meri puri video mein show ho raha hai.
3: She rejected attempts by Besla to shift the blame for the hit and run and recounted the horror she faced.
2: Tab maine dekh liya ki un logon ne shayad se pee rakhi hai aur usme पीछे भी दो लोग हैं क्योंकि इस गाड़ी के शीशे सारे काले से वो एग्जैक्टली दिखाई नहीं दे रहा था मुझे और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा उनसे आगे चलूं क्योंकि मुझे डर लग रहा था जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में अपनी गाड़ी मेरी बाइक के आसपास लेके आ रहे हैं तो मुझे डर था कहीं टक्कर मार के मुझे गिराना थे. क्लियरली अटेम्प्ट टू मर्डर है ये तो मतलब बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उस लड़के के अगेंस्ट.
3: Baisla, who claims to be a former kabaddi player, had tried to defend himself earlier.
5: ये बार बार आगे जा रहे थे फिर स्लो कर लेते थे. ठीक है जी, मैं बताता हूँ कि क्या मैं मतलब लड़कियों के स्कूल मतलब उनको ठोकता फिर रहा हूँ बाइकों को ठोकता तो पीछे से ठोक बचाई मैंने बहुत कोशिश करी बचाने की. इन्होंने बिना देखे शीशे में देखे अब प्रोफेशनल ड्राइवर हो आपको ये नहीं पता कैसे मोड़ बिना शीशे में देखे ऐसे देख के मोड़ रहे हैं उस साइड वाली सफेद पट्टी को देखो वो एकदम से ऐसे मोड़ी इन्होंने नहीं उस मुझसे कंट्रोल नहीं फिर भी मैंने खूब बचाने की कोशिश करी.
3: रोड एक्सीडेंट्स किल्ड मोर देन 1.8 लाख पीपल इन इंडिया लास्ट ईयर रफली 500 अ डे. द गुरुग्राम हिट एंड रन इज अ ग्रिम रिमाइंडर of the risk motorists, riders of two-wheelers face on the roads. With Arvind Ojha, Anshul Singh, Neeraj Vashisht and Himanshu Mishra, Bureau Report, India Today.

0: So the big question, how safe are India's roads when reckless driving can turn into a life-threatening attack? After Gurugram, now another video has surfaced from Uttar Pradesh's Greater Noida. Two road crashes, two chilling videos. A chilling video from September 5 is now going viral that shows a young man being mowed down by a speeding car in the early hours in Greater Noida West, an incident which was captured on camera. So the impact was caught on camera, leaving the victim seriously injured. The police registered a case at Bistrak Police Station under Sections 281 and 125B of the BNS, arrested the accused and even seized the vehicle. The visuals are disturbing, but they also expose a larger problem. When roads become spaces for rage, recklessness and impunity, an ordinary commute can become a fight for survival. My colleague Himanshu Mishra is now joining us with more details on this. Himanshu, Gurugram ke baad ab ye ek aur hit and run ka case samne aaya hai Greater Noida West se. Kya action liya gaya hai aur kya hua tha exactly us raat? Kaise kya gaadi over speed kar rahi thi aur is wajah se control nahi ban paya aur hit kar diya aadmi ko?
1: ये 5 सितंबर का मामला है। ये एक मूर्ति चौक जो ग्रेटर नोएडा के पास का जो गोल चक्कर है वहां का ये पूरा मामला है। सुबह 4:35 पर जब गाड़ियां स्पीड से चल रही थी उस वक्त ये शख्स रोड को पार कर रहा था और गाड़ी बड़ी स्पीड में आती है। आप देखिए टक्कर इतनी तेज लगती है वो सीसीटीवी में क्लियर दिखता है क्योंकि वो गोल चक्कर है एक मूर्ति का, ग्रेटर नोएडा वेस्ट का वो पूरा इलाका है। टक्कर इतनी तेज लगी कि वो आदमी एकदम से उछल जाता है और उछल करके जब वो गिरता है तो कहां गिरता है वो फ्रेम में दिखता भी नहीं है क्योंकि गाड़ी की स्पीड काफी थी और वो उछल के दूसरी तरफ गिरता है। उसके हाथ में जो सामान था वो भले ही फ्रेम में गिरता हुआ दिख रहा है जो पूरा जो सीसीटीवी है, लेकिन वो आदमी दूसरी तरफ गिरता है। बच तो जा गया वो, लेकिन उसके दोनों पैर दोनों हाथ फ्रैक्चर हो जाते हैं। और एक और खबर जो है वो अच्छी नहीं, ये है कि उसके बैक बोन में चोट लगी है, वहां भी फ्रैक्चर बताया जा रहा है, यानी गंभीर चोटें उसको लगी हैं। अब चूंकि ये सीसीटीवी वायरल हुआ तो वायरल होने के बाद फिर पुलिस ने उस ड्राइवर के बारे में पता किया और उसके बाद उसको अरेस्ट किया, FIR दर्ज की, उसको गिरफ्तार किया। लेकिन चूंकि जो धाराएं होती हैं अब इस तरीके के एक्सीडेंट, क्योंकि सुबह का वक्त है, रेड लाइट गोल चक्कर का वो इलाका है, अब वहां पर पुलिस ने जो धाराएं लगी थी उसके हिसाब से अवेलेबल धाराएं थी। अब इस पूरे मामले में आगे का इन्वेस्टिगेशन जारी है ताकि गाड़ी के ओरिजिनल स्पीड पता लग सके। इसलिए पुलिस ने एक मूर्ति से लेकर जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का पूरा स्ट्रेच है उसके सीसीटीवी पुलिस जो है वो खंगाल रही है।
0: Himanshu, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए। सो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन दिस केस, ही हैज बीन अरेस्टेड, द व्हीकल हैज आल्सो बीन सीज्ड, बट दिस इज द शॉकिंग विजुअल, इन फैक्ट अ चिलिंग विजुअल ऑफ द एक्सीडेंट। एज यू कैन सी अ स्पीडिंग कार इज देयर एंड a man is crossing the road and that is when it hits, it does not even slow down, it hits the man and then the driver flees and the man flunks into air. And these are the chilling visuals that are now going viral, after which action was taken. This is from September 5th. This is from Greater Noida West area in Gautam Buddh Nagar. And this is near the Ekmurti Chowk. And as you can see, the man, the victim, in fact, was severely injured in this accident.

0: Now, some more news coming in. Passengers aboard an Iranian Boeing 737 went through moments of terror shortly after takeoff from Mashhad on Tuesday. The Sepahan Airlines flight was headed to Kermanshah when a reported tire burst or detachment triggered a serious mechanical problem. Debris from the tire is reported to have struck an engine, causing intense vibrations across the aircraft. Inside the cabin, panic quickly spread. Overhead bins reportedly flew open, bags came crashing down, while parts of the ceiling panels and interior lining broke loose and fell into the cabin, as you can see in these visuals. These are now going absolutely viral. Videos from inside the aircraft show frightened passengers crying out and reciting prayers as they feared the plane could crash. Now shifting focus, Gali politics has erupted in Madhya Pradesh between BJP MLA Rameshwar Sharma and AIMIM Chief Asaduddin Owaisi over the remark that was made by the BJP amid the missile remark that was made by him. So AIMIM Chief Owaisi abuses BJP MLA. Owaisi abuses and says that not afraid of eunuchs like you. So Owaisi has attacked the BJP MLA after the missile threat. So the BJP MLA had earlier said that fire missile at Kazi camp, and after which Owaisi has hit back abusing the BJP MLA, saying that if you have the courage, go ahead.
1: Rameshwar Sharma, agar tu mai ke naal ho, launch kar ke akela ghar to kaazi kar ke aake. Mai shaheed hone taiyar hu, marne taiyar hu. Tumhare jaise ke samne sar jhukane wale.
0: And my colleague Ravish Pal Singh is now joining us on this story. Ravish, ye pura mudda kya hai jiske baad Owaisi ne BJP MLA par attack karte hue unhe gaali di?
2: देखिए अंजलि, ये पूरा मुद्दा शुरू हुआ था जन्माष्टमी से. दरअसल भोपाल में जन्माष्टमी का एक इवेंट था जिसमें रामेश्वर शर्मा, जो कि बीजेपी के विधायक भी है, उनको एज अ गेस्ट बुलाया गया था. और जब वो अपनी स्पीच दे रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने एक कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क दिया था. उन्होंने भारत की जो बढ़ती शक्ति है उसको बताते हुए, जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर का वॉर हुआ था, तो उसका जिक्र उन्होंने किया था. उस दौरान उन्होंने कहा था कि भारत आज की तारीख में बहुत शक्तिशाली है. और इसी दौरान उन्होंने एक विवादित बयान दिया कि आप करोन में खड़े होकर, क्योंकि ये जो जन्माष्टमी का इवेंट था ये करोन चौराहा है भोपाल का, वहां पे हुआ था, तो करोन से अगर आप मिसाइल छोड़ेंगे तो वो काजी कैंप पे जाके गिरेगी. तो यहाँ पे विवाद हुआ था क्योंकि काजी कैंप जो है वो एक माइनॉरिटी पॉपुलेटेड एरिया है, और इसी को लेकर के बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी उस वक्त हुई थी और रामेश्वर शर्मा के खिलाफ FIR की मांग भी हुई थी. अब कल ओबीसी साहब जो है वो भोपाल में थे, यूसीसी के अगेंस्ट एक पब्लिक रैली थी उसमें पार्टिसिपेट करने, और जब वो यूसीसी के खिलाफ लगातार बातें कर रहे थे तो उसी दौरान रामेश्वर शर्मा का जिक्र आया. और फिर जो ओवैसी है उन्होंने इसका रिप्लाई देते हुए जो बातें कही वो भी अब एक तरीके से कंट्रोवर्सी में आ गई है. उन्होंने रामेश्वर शर्मा को कहा कि अगर आप माइक के लाल हो, अगर आप इतने पावरफुल हो, तो आप आओ और मैं आपको देखता हूँ कि आप कैसे मिसाइल चलाते हो. सिर्फ यही नहीं, ओवैसी ने बकायदा काजी कैंप में रहे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके भी नाम गिनाया और कहा कि काजी कैंप सिर्फ इसलिए बदनाम नहीं है कि वहाँ मुसलमान रहते हैं, बल्कि काजी कैंप में कई फ्रीडम फाइटर्स भी रहते हैं. तो रामेश्वर शर्मा को शायद उनका नाम नहीं पता. ये तमाम बातें भी कल पब्लिक रैली के दौरान ओवैसी ने कही.
0: जी रवीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारी के लिए. सुगाली पॉलिटिक्स इरप्ट्स इन मध्य प्रदेश बिटवीन बीजेपी एमएलए एंड एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आफ्टर द फायर मिसाइल एट काजी कैंप रिमार्क बाय द बीजेपी एमएलए. एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी हिट बैक एट द एमएलए अब्यूजिंग हिम एंड सेइंग दैट इफ यू हैव द करेज गो अहेड. And with that, it's a wrap on this bulletin. Thank you for watching India Today. But do stay with us, as on the other side, we'll get you more on the new UPI norms. 0.4% levy will be imposed on the merchants over transactions which are above 2,000 rupees. We'll get you all those updates and what it means for you on the other side. Stay with us.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
2: Money, money, money, money, every month.
3: Soch batlo aur bank bhi.
4: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो अब डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।

0: will be charged any fee. The party, in fact, has accused Congress of suddenly discovering its love for UPI and of misleading people over the very issue. So this remains to be the current development and the flashpoint between the two, the war of words that still continues. Take a look at some of the reactions as we speak.
1: दिन में लगभग जो है करीब 70 से 80 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, तो मुझे मुझे तो लगता है कि अब इंडस्ट्री के पास आएगा रेवेन्यू, वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, ज्यादा और छोटे शहरों में जा पाएंगे, ज्यादा मर्चेंट्स को ये कर पाएंगे, डिजिटाइज कर पाएंगे, कस्टमर साइड पे भी टी पैप्स को भी पैसा मिल रहा है फाइनली 6 साल बाद, तो हम सब जो है और मार्केटिंग कर पाएंगे और यूज केस ला पाएंगे।
2: यूपीआई की वजह से डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में बहुत स्केल हो गया है, सभी लोग यूज करने लग गए, बट अब इसका जो स्केल इतना हो गया है, इसका जो कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैंक्स और पेमेंट कंपनी सपोर्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो जो ये डायरेक्शन आया है ये पेमेंट्स इंडस्ट्री के लिए, बैंक्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, और जो आम इंडियन है, जो इंडियन ग्राहक है, उसके लिए बिल्कुल भी न्यूट्रल है, कोई चेंज नहीं है।
3: यूपीआई में तो ऐसा है कि भाई 2000 तक जो व्यापारी लोग होते हैं वो 2000 तक उसकी सीमा है, और उसमें कोई मतलब और ज्यादा पैसा ले रहे इसी तरह का राहुल गांधी का आरोप है, वो उसमें तथ्य नहीं है। कोई सरकार ने अभी निर्णय ऐसा लिया भी नहीं है। वो किसी व्यापारी को और किसी लोगों को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है। तो राहुल गांधी ने कैसा उनको मालूम हुआ कि हमने पैसा उनका ब्याज ले रहे वो बढ़ा रहे करके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
4: जो भी कंपनी इस प्रकार शोभा ये सेवा देती है सब लोग इसका पैसा भी लेते हैं, तो हमारी सरकार ने जो शुरू किया है यूपीआई का सेवा, लोगों को बहुत सुविधा मिली है, तो उसके लिए एक मिनिमम चार्ज सरकार को लेना चाहिए। एक तो सिस्टमेटिक होना चाहिए, डिसिप्लिन, दूसरा सरकार के पास रिवेन्यू भी आएगा।
5: वॉट एवर मोदी गवर्नमेंट इज नॉट अ वेलफेयर गवर्नमेंट, इट्स प्योरली अ बिजनेस माइंडेड गवर्नमेंट, यू कांट एक्सपेक्ट अ बेटर अप्रोच फ्रॉम देम।
6: ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा एमडीआर रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफ़ी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ़ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं, ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
0: Now, leader of opposition of the lower house, in fact, then the Congress leader, Rahul Gandhi, had targeted Prime Minister Modi over this entire UPI payment services in the year 2016. Listen in to what he had said.
7: There's the whole concept of the PayTM, pay to Modi. That's the idea behind cashless economy, that a few people should get maximum benefit from every single cash transaction. That is what is going on. It has damaged the country tremendously, it has hurt a lot of people, and it has specifically hurt the poor people. So it has devastated especially the poor people, farmers, fishermen, daily wage laborers, everybody has been hurt by this.
0: Now earlier, my colleague Anjali Pandey spoke with Rohit Mahajan, founder and CEO of Plutus, over the UPI charge. Listen in to the conversation.
8: Mr. Rohit Mahajan, help us understand this 0.4% levy on UPI transactions above 2,000 rupees from a merchant's point of view. What changes for the merchants?
9: So, very nice. You want me to tell you the basics of the UPI first. So, UPI is actually two things. One is P2P and second is P2M. What is P2P? P2P is when I transfer you a money or you transfer me a money, this is person to person. So there is no charge on P2P. Let's be very, very clear about it. There are no charges on P2P. Now let's come on to the P2M. So what is P2M? When we pay to a merchant or a QR code or something. Now, if you'll see, and you'll be shocked to hear, 86% of P2M transactions are less than 500 rupees. 96% is less than 2,000 rupees. So 96% of transactions on P2M are free. And government is saying that no

0: से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरे शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
0: इसीलिए सेनको इंडिया का
3: अमंग्स मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
0: अब मैं क्या ही बोलूं?
4: परिवार अटूट भरोसा।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: इट्स अ न्यू चैप्टर इन केरला, अ न्यू लीडर, अ न्यू प्रॉमिस। व्हाट इज वीडी सतीशन्स विजन फॉर केरलम? द केरलम ही ड्रीम्स ऑफ, द पॉलिटिक्स दैट विल शेप इट एंड द रोड अहेड। Catch the India Today Roundtable Keralam, 17 September, all through the day, only on India Today.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: पहले सिया आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी तबीयत कैसी है? इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद आप ठीक हैं? एनी इंजरीज?
1: हाँ, मतलब मेरे को मेरी नीज में इंजरी आई है एंड मेरी पूरी बॉडी में लाइक बॉडी पेन है, मेरा बैक में और लेग्स में थोड़ा मसल पुल हुआ है. सो अभी मतलब फिजिकली आई एम स्टिल रिकवरिंग एंड
0: अभी मैं ठीक हूँ.
1: हाँ,
0: मैं ठीक हूँ.
1: Yes,
0: ठीक है. But when you hear Sia, when you heard today that the person who hit you in that car has been arrested, what was your first feeling? Because he had been, he had virtually run away from the law. He was finally arrested today. What was your first feeling when you heard ki he's been arrested?
1: हाँ सी, मुझे मीडिया के ही सोर्सेस से पता चला एंड कि वो अरेस्ट हुए हैं. एंड सी, मेरा तो कितना इतना कोई लाइक कोई शॉकिंग इतना रिएक्शन नहीं था. किसी ने किसी को इंटेंशनली हिट करके और इतनी तेजी से हिट करके कि किसी की इंसान वहां पे ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी. तो अगर ऐसा इंसान उस इंसिडेंट के बाद भाग जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके आती है, तो ऑब्वियसली उस इंसान ने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसलिए उसको अरेस्ट करा है. एंड अरेस्ट करना ही एक सेफ एक्शन नहीं होता. दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई थिंक सो जो हुआ है. एंड इसके बाद भी जब तक उनको कोई मतलब सजा नहीं मिल जाती, उनको और उनके साथ के तीन साथियों को, तो तब तक मैं नहीं मानूंगी कि कोई मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है.
0: बट ये मुझे बताइए, एंड आई विल देन कम टू योर फादर, ये बताइए आज जब या उनका लॉयर कहता है नो इट वॉज सिया हु वॉज ड्राइविंग रैशली, शी केम इन द वे, I had nothing to do with it. I actually tried to avoid hitting her. क्या कहेंगे? Sia, you want to respond?
1: आप मुझसे
0: ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ. Then I'll come to your father.
1: So जब उनके lawyer, okay, आप मुझसे पूछ लीजिए. जब उनके लॉयर से मैं यह बयान सुनती हूँ तो मुझे बहुत देखिए हंसी भी आती है और मुझे बहुत गुस्सा भी आता है. मतलब कैसे वो ये चीज डिनाई कर सकते हैं कि उनकी गलती नहीं थी और कैसे वो अपने क्लाइंट को सेव कर सकते हैं. जो आज पूरे देश भर में जो वीडियो चल रहा है कि कैसे इंटेंशनली वो मुझे फर्स्ट लेन से एकदम तेजी से अपनी गाड़ी लाके थर्ड लेन में आके मुझे इंटेंशनली हिट करके जाते हैं, मैं पूरे रोड पे काफी दूरी तक घिसटते हुए जाती हूँ. मतलब आज हर जगह से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं, एंड दूसरी जगह वो अपने क्लाइंट को कैसे सेव कर सकते हैं. तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि कैसे वो जस्टिफिकेशन दे सकते हैं ये सारी मीडिया पे.
0: एंड वॉज ही फॉलोइंग यू राइट थ्रू? वॉज दिस पर्सन फॉलोइंग यू व्हेन यू आर ड्राइविंग द बाइक? यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ बाइकर्स. दिस इंसिडेंट हैपेंड ऑन संडे. यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप. क्या वो आपको फॉलो कर रहे थे थ्रू आउट?
1: सो बेसिकली क्या हुआ, संडे था एंड यूजुअली संडे को जितने भी बाइकर्स होते हैं वो राइड के लिए जाते हैं क्योंकि उस दिन कोई ट्रैफिक नहीं होता. एंड सुबह 7 बजे का टाइम था, मेरे सिर्फ एक दो जो फ्रेंड्स थे मैं उनके साथ जा रही थी. एंड मैंने नोटिस करा कि गोल्फ कोर्स रोड पे कि जब वो मेरे साथ में आके मेरे से कुछ एक्शन कर रहे थे, रोकने के लिए बोल रहे थे, जो ड्राइव कर रहे थे वो भी, और उनके साइड वाली सीट पे भी दोनों मुझे कुछ ना कुछ एक्शन कर रहे थे. एंड मैं डर गई थी एंड जिसकी वजह से मैंने उनको एक चीज बोला कि आप थोड़ा साइड में हो जाओ, आप गैप बनाओ अपनी गाड़ी और मेरे बाइक के बीच में. तो मुझे लगा कि वो सुन नहीं रहे हैं तो मैं थोड़ा आगे बढ़ी उनसे और मैंने मिरर में देखा वो कंटिन्यूसली उस उस पॉइंट से मुझे कंटिन्यूसली चेस कर रहे थे, मेरे को फॉलो कर रहे थे. एंड वो पता नहीं क्या उनके दिमाग में क्या था कि वो कंटिन्यूसली मेरे पीछे आ रहे थे और मैं रुकी नहीं. वो रोकना चाह रहे होंगे, क्या बात करना चाह रहे होंगे. एंड जब एक पॉइंट आया, जब बीच में एक गाड़ी आई एंड मैंने स्लो किया, एंड उसी पॉइंट पे वो इतनी तेजी से आते हैं एंड वो इंटेंशनली मुझे मार के जाते हैं.
0: सो इट वॉज इंटेंशनल. रोशन चौहान, आप अपनी बेटी की कहानी सुन रहे हैं, गुस्सा आता है कैसे देखते हैं? बिकॉज शी हैज बीन इन अ वे, कुछ लोग कहते हैं आपकी, जब आप सुनते हैं कि सिया की गलती है, जिस तरह से लॉयर और जो अक्यूज्ड है कहते हैं, मांग रहा उनसे
2: जिस प्रकार से उनके लॉयर, जी वो तो अपने गिल्टी महसूस कर ही नहीं रहे ना. मैं तो मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा. और जिस प्रकार से हमारी गाड़ी पे हमारा कैमरा लगा हुआ था और ये जो घटना उसके अंदर आ गई और वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चल गई, अगर वहां पे कैमरा नहीं होता और वो व्यक्ति हिट करके चला जाता, तो मैं डेफिनेटली कहता हूं अगर वो आज पकड़ा नहीं जाता तो कल कहीं ना कहीं अपने गांव की चौपाल पे बैठ के अपने चार दोस्तों के साथ इस चीज का मजाक उड़ा रहा होता और दोस्तों से कहता कि मैंने आज एक बाइक वाले राइडर को टक्कर मारी और वो इस प्रकार से गिरा और मैं यहां बैठा हूं. तो ये जो घटना हुई है ये मामूली घटना नहीं है. और जिस प्रकार से मैंने उसकी एक रील देखी थी, वो बोल रहा था मेरे को पता ही नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की. और जिस इंसान को ये भी ना दिख रहा हो और वो दूसरे की मांगी हुई गाड़ी, अपने दोस्त की मांगी हुई गाड़ी दो दिन से लेके चला रहा था और इस प्रकार से गाड़ी मंगा के चला रहा था और जिस प्रकार से उसने हिट करा है कि रील में कह रहा था कि भाई यू टर्न आ रहा था तो मैंने ऐसे काटा, जबकि यू टर्न के अंदर पॉइंट ये होता है कि आप अपनी गाड़ी को स्लो करोगे ना कि आप अपनी गाड़ी को रेस दोगे. तो उनकी जो मानसिकता है वो क्रिमिनल मानसिकता है.
0: आप कह रहे हैं क्रिमिनल मानसिकता है, लेकिन अब अरेस्ट हुए हैं उन पर बीएनएस के द्वारा रैश ड्राइविंग, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है. आप समझते हैं कि ये डिलिबरेट इंटेंशनल था, जैसे आपकी बेटी कह रहे इंटेंशनल था, आप चाहते हैं इसे अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाए, सही है?
2: हाँ बिल्कुल, अटेम्प्ट टू मर्डर ही है जी. सर आई दो टन की गाड़ी को अगर आप रेस लगा के किसी के साथ हिट करोगे तो वो तो गोली से ज्यादा काम करती है. गोली तो फिर भी छोटी होती है और इतनी रेस से अगर आप इतनी स्पीड से गाड़ी मार के आप जा रहे हो और फिर आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, आप रुक नहीं रहे और उनको भी धमकाते हुए जा रहे हैं और उस टाइम आप उनको देखते, उनकी दाढ़ी बढ़ रही है, बाल खुले हुए हैं, जैसे तीन दिन से लगातार नशा कर रहे हो और अगले दिन शेविंग बनाकर अपने चेहरे को साफ करके दिखा रहे थे मीडिया को कि मेरी तो ऐसी कोई गलती नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं था, गलती से लग गई. तो ये छोटी बात नहीं है, ये तो मेरी बेटी थी जिसके पास फैसिलिटीज थी और कैमरे लगे हुए थे. मैं तो इंडिया में बहुत सारी वुमेन्स ऐसी होती हैं जिसको ये हिट करके भी भाग गए होंगे, उनकी तो स्टोरी भी नहीं आई होगी, पता भी नहीं चला होगा जहां पे कैमरे नहीं होते. तो गुड़गामा जैसे हाईटेक सिटी के अंदर अगर ऐसे लोग ऐसी घटना को अंजाम देने में भी नहीं डर रहे तो महिला सुरक्षा का कहीं ना कहीं मजाक उड़ता है और वो भी दिन दहाड़े.
0: नहीं बिल्कुल, तो आपकी बात आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये तो, गुरुग्राम जैसे
2: नहीं तो आज
0: गुरुग्राम अपने आप को मिलेनियम सिटी कहता है और मिलेनियम सिटी के बीच में समथिंग लाइक दिस हैपन, नॉट द फर्स्ट टाइम. बट सिया, हैव यू थॉट कि अब मैं बाइकिंग नहीं करूंगी? आई मीन यू आर पार्ट ऑफ अ बाइकर गैंग और अ बाइकर ग्रुप, मैं कहूंगा गैंग वर्ड नहीं करूंगा, बाइकर ग्रुप. यू आर बाइकिंग एवरी वीकेंड. नाउ आर यू थिंकिंग ट्वाइस, आई डोंट वॉन्ट टू गो बाइकिंग क्योंकि कल और एक समबडी एल्स मे बी आउट देयर हु विल ड्राइव लाइक दिस एंड नॉक मी ओवर. बाइकिंग अभी भी करेंगे आप?
1: नहीं सी, देखिए जो इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से मैं थोड़ा मतलब ट्रॉमाटाइज हूं. वो एक डर है मेरे मन में क्योंकि देखिए आज जाऊंगी कल जाऊंगी, जब तक इस इंसिडेंट पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हम नहीं लेंगे, कोई एग्जांपल सेट नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ऐसे लोगों के मन में डर पैदा होगा. और अगर जब तक हम उनको सजा नहीं दिलवाएंगे, नहीं तो ऐसे कितने लोग हैं जो गुड़गांव दिल्ली की सड़कों पे घूमते हैं, जो फीमेल राइडर्स को चेस करते हैं, उनका पीछा करते हैं, पता नहीं क्या मेल ईगो है उनके अंदर या फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये एक्शन हम नहीं लेंगे तब तक शायद से मैं भी डरूंगी फिर से वापस दिल्ली और गुड़गांव के रोड पे जाने से, और शायद से मुझे भी टाइम लगे कि सी देखिए वो एक डर है मेरे अंदर कि मैं कहीं ना कहीं इन दिल्ली गुड़गांव और आसपास की स्टेट्स पे और उनकी रोड पे मैं भी अपने आप को अनसेफ फील करती हूँ।
0: आई वॉन्ट टू आस्क यू दिस, यू सेड मेल ईगो, डू यू फील बिकॉज यू आर अ वुमन दैट्स व्हाई द पर्सन थॉट ही कुड गेट अवे, आप महिला हैं इसलिए बाइकर को लगा आई कैन हिट हर एंड गेट अवे?
1: Yes, obviously, and मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट द ओनली फीमेल राइडर जिसने ये चीज फेस किया है अपनी लाइफ में। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो मतलब राइड्स पे जाती है, ये तो फिर भी इंटरसिटी राइड थी, जो लोग लॉन्ग राइड्स पे जाते हैं, जो पूरा देश बाइक से घूमते हैं, उनको कितनी हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, कितने लोग उनको चेस करते हैं एंड चेस करने के नाम पे वो कभी आपके पास अपनी गाड़ी लेके आएंगे और आपको कमेंट पास करेंगे, और ये सारी चीजें हैं कि जो आपको फेस करना पड़ता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल को कोई भी ऐसा इंसिडेंट किसी के साथ होता है एंड आज मेरे पास कैमरा था और मेरे पास मौका था इस इंसिडेंट को कि मैं सबके सामने लेके आ पाई, तो मेरी एक यही मैसेज है सारी फीमेल राइडर से एंड इनफैक्ट मैं ये भी बोलूंगी सारे मेल राइडर से भी कि अगर आपके साथ कोई भी इन फ्यूचर ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप प्लीज इंडिपेंडेंटली और स्ट्रांगली ये चीज दुनिया के सामने लेके आइए एंड बताइए कि कैसे लोग हैं जो कितनी रैश ड्राइविंग करते हैं और कितना नुकसान बाकी लोगों को उठाना पड़ता है इस चीज का।
0: Well, Sia, all I can say, it takes courage to put all of this out in the public domain. तो आपने वो बहादुरी दिखाई है। मैं आप और रोशन चौहान जी आप दोनों आए इस शो पर, आपने अपनी बात रखी है, मैं चाहता हूं कि आपकी बात लोग सुने ताकि सिया के साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो, कम से कम थोड़ा भी डर तो हो कानून का कि इस तरह से हिट एंड रन इज अनएक्सेप्टेबल। आई थैंक यू बोथ वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों इस समय इस कठिन समय में हमारे साथ जुड़े हैं।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: Can one toilet really change the picture of an entire village? The answer is yes. In Uttar Pradesh, the sanitation drive has gone beyond building toilets. It has changed the way villages look and the way people live. Under the Swachh Bharat mission, more than 2.15 crore household toilets have been built across the state. In the second phase, another 48.99 lakh toilets were constructed, strengthening sanitation facilities across rural Uttar Pradesh. The state is also preparing to spend around 750 crore rupees every year on the maintenance of 15.5 lakh drains, septic tanks and Gobardhan plants. These efforts have helped Uttar Pradesh secure the third position in the country under the Swachh Bharat mission. To see this change on the ground, our team visited Didori village in Moradabad. Preeti, a resident, says,
4: Jitne matlab pareshan the wo log, ab koi pareshan hi nahi hai unhe. Saaf safai bilkul badhiya hai sir.
3: Leelavati adds,
5: Bahut laabh hai bhaiya is time. Sab kuch laabh hai. Dekho bahar nahi jaate. Ab tank se khula mila hai.
3: And in Mangupura village, Samarpal Singh says,
6: Saaf safai समय से होती है गांव में, सफाई कर्मचारी समय से आते हैं और शौचालय मुक्त है हमारा गांव। खुले में कोई शौच नहीं करने जाता। समय समय से फॉगिंग भी होती है गांव में जिससे कि बीमारी ना आए।
3: सो द ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट जस्ट अबाउट टॉयलेट्स। क्लीनर रोड्स, रेगुलर सैनिटेशन, कम्युनिटी टॉयलेट्स एंड द ODF कैंपेन आर हेल्पिंग राइट अ न्यू स्टोरी फॉर विलेजेस अक्रॉस उत्तर प्रदेश।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: यू करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरे शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
3: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
0: अब मैं क्या ही बोलूं?
4: परिवार अटूट भरोसा।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: वी अटेम्प्ट टू ब्रिज बिल्स, वी आर आफ्टर ऑल द कंट्री ऑफ शांति दूत योगेश्वर श्री कृष्ण। We are friends with Russia, we are friends with Ukraine, we are friends with Iran, we are friends with the UAE, we are friends with Saudi Arabia, we are friends with the United States of America. We were able to end a conflict in Russia and Ukraine. It's been on for 4 years, 2022, and again, the war in West Asia threatens to be endless. We've been able to find a solution, so we are the solutions country.

0: ऐप के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Thank you for staying with India Today. I'm Suesha Samant, and we cut across to breaking news coming in. The Punjab drug suicide hearing that is underway in court. The High Court has asked, how can a minister be named and accused? Punjab Minister Cheema's first reaction on the drug suicide, where Cheema has said in the High Court, saying, taking my name means nothing. Cheema, in his defense, has said that taking my name does not mean that I am involved. That is the defense coming in from Cheema, who said that I have all the evidence. The investigation is undergoing in the case. It's ongoing. When the time comes, I will bring all the new evidence of how this opposition is playing politics over dead bodies in this case. That is the defense that Minister Cheema is stating in the Punjab High Court, where he's called this political vendetta. You would remember how Gulzar Singh, who had committed suicide, had named Minister Cheema in that last video that he had recorded, where he had questioned the minister over how drugs were so easily available. And the fact that Minister Cheema was named in that video, where he was not even stated in the FIR, but now in the Punjab High Court, where he is going on to say that how can he be named and accused, because it is not that he was directly involved. And all of this that is happening is nothing but political vendetta.
1: ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੀਮਾ, ਇਹ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
2: ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ?
1: ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2: ਚਿੱਟੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਂਦਾ।
3: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚਿੱਟਾ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ED ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਆਰੰਭੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
0: Let me take this to my colleague Aseem Bassi, now joining us on the broadcast. Aseem, do give us details of all that is being said in the High Court and how Minister Cheema is defending himself.
4: Well, first of all, the PIL was filed in the High Court demanding a CBI probe into this entire matter, and the High Court today demanded a status report from the Punjab police. The DSP Darba was there, and the High Court demanded a status report. Although there was some observation that a minister's name cannot be, it cannot be assumed that the investigation is not proper just because a minister's name has cropped up. But the final order is not come. It was an observation. And now Harpal Cheema did a hurried press conference saying that when asked India Today asked a specific question about Gulzar Singh's suicide case and said that your name has cropped up into this, a dying statement, in the dying statement Gulzar Singh took your name, when India Today asked the minister, the minister said the matter is in the High Court, the matter is sub judice, and the court has said this. Plus also he said that the investigation is still on, and till the investigation is complete, he said the investigation is still on, and he even mentioned that he has all the evidences, and he will expose that how opposition parties are playing the politics over the dead bodies. So he specifically answered that question. Before answering this question, he totally attacked the Shiromani Akali Dal BJP government in Punjab from 2007 to 2017, saying that the entire drug man is corrupt in Punjab during the 2007 to 2017. Also he attacked the Gujarat government, saying that the Gujarat has failed to control to control the drug menace, and the drug distribution is done from Gujarat. So in a way, it is a political counter attack from Harpal Cheema, saying that Shiromani Akali Dal and BJP was responsible for the drug menace in Punjab. Yes.
0: All right, Aseem, we leave it at that for the moment. Many thanks for getting us the latest. We'll keep coming back to you for further updates on this story. Shifting focus now, tensions in West Asia have escalated massively. Islam's holiest site, Mecca, was targeted in a drone attack. Saudi Arabia claims the drone was launched by the Houthis. The drone was intercepted and destroyed by Saudi air defenses before it entered prohibited airspace over the holy city. Saudi-led coalition in Yemen has warned Houthis and stated that the security of holy mosques in Mecca is a red line. The statement comes amid continuing Houthi missile and drone attacks that are on Saudi targets, including the latest attacks on Saudi energy infrastructure. Riyadh has also activated emergency warnings in Mecca, asking people to move to safe places, stay indoors and away from windows and exposed areas in case of danger. At the same time, the battle for the Red Sea is getting more serious. The Houthis have made significant gains along Yemen's western coast and tightened their grip on the strategic Bab al-Mandeb Strait. India, too, has reacted to the escalation. The Ministry of External Affairs has condemned the recent attacks on Saudi Arabia, calling the escalation in Red Sea concerning and calling for restoration of peace at the earliest.
5: Recently, there was an attack on Saudi Arabia, which we have condemned. We have condemned the attack on the Saudi sovereign territory, including on civilian infrastructure and economic assets. I would say that such attacks, they undermine regional stability and threaten freedom of navigation through the Strait of, through the Bab al-Mandeb. And these are obviously unacceptable to us. We hope that there is early restoration of peace and stability in the region.
6: Hey guys, see you on this side.
0: And while he first deliberately hit the biker, then he tried to flee. The Gurugram hit and run accused who tried to escape even after he was arrested. The police has claimed that Kalyan Besla allegedly tried to flee on the pretext of urinating, and while trying to escape, he fell and sustained minor injuries. Kalyan Besla was later taken to a hospital. He was given preliminary treatment. Police then took him back into custody. Remember, the Gurugram police has added an attempt to murder charge against the accused after analyzing CCTV footage of the incident. The cops have said that Kalyan Besla deliberately hit the woman biker and that his intent was to kill Sia. Cops have also said that right after the incident, Kalyan Besla switched off his mobile phone, changed locations only to escape arrest. Meanwhile, speaking exclusively to India Today, victim biker Sia has said Kalyan Besla's arrest is not enough and has also demanded strict action against him and his friends. The Gurugram police, on the other hand, has arrested the second accused in the case and the accused, who has been identified as Lavnish. He was allegedly present in the car with the main accused, Kalyan Besla, during that incident.
7: देखिए जो भी बयान उनकी तरफ से आए हैं उनके लॉयर और जो भी मैं कल से ट्विटर इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ उनके सपोर्टर्स के बयान तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज़रूरत है अपनी जस्टिफिकेशन देने की जो चीज़ें मेरे कैमरा में रिकॉर्ड हुई है इनफैक्ट एक कैमरा में नहीं है वो मल्टीपल कैमरास में रिकॉर्ड हुई है जो मेरे फेलो राइडर पीछे चल रहे थे जब वो रेड लाइट पे रुके कैसे वो भागे और मुझे नहीं समझ आता वो कैसे ये बयान दे सकते हैं कि गलती से टक्कर हो गई मुझे तो पता नहीं था लड़की है तो ये सारे बयान उनके झूठे बयान हैं और मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मेंटालिटी है क्या उनकी मंशा थी किस थॉट से वो मेरे को चेस कर रहे थे एंड इंटेंशनली मार के गए वो तो पूरे देश ने देखा है उस वीडियो में कि कैसे वो इंटेंशनली मार के वहां से भागे हैं
8: कि मेरे को वॉशरूम मारा था इसलिए मैंने गाड़ी तेज भगाई वॉशरूम मारा था तो गाड़ी रोक भी सकते थे स्लो भी कर सकते थे और वॉशरूम कर सकते थे क्या रात भर वॉशरूम नहीं करा ये कौन सा नॉनसेंस बयान है कि वॉशरूम के कारण गाड़ी भगा रहा था नोएडा की कोर्ट में गए थे जहां पर शिवानी चौहान जी का सिया का 164 के बयान हुए और जज साहब के सामने हुए उसके बाद उनका मेडिकल के लिए उनको वहां सेंटर जो वहाँ का हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया, और जब हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी मतलब 6 या 7 बज गए थे। तो वहाँ पर उनकी MLC बनी, जहाँ जहाँ उनके चोट लगी थी वो बताया, उन्होंने ये कार्ड दिया। रात को भी काफ़ी पेन रही है सिया के, क्योंकि चोट लगने के बाद में पता चलता है कि कहाँ कहाँ चोट लगी हुई है, गुम चोट उसकी आई हुई है काफ़ी। और अभी वो कुछ देर के बाद यहीं पे दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में होली फैमिलीज में जाकर अपना जो भी एक्सरे हैं, MRI है, जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाइए।
0: India Today spoke exclusively with the hit and run victim Sia, who was injured in that incident. Listen in to what she said.
9: When you hear Sia, when you heard today that the person who hit you in that car has been arrested, what was your first feeling? Because he had been he had virtually run away from the law. He was finally arrested today. What was your first feeling when you heard ki he's been arrested?
7: हाँ सी, मुझे मीडिया के ही सोर्सेज से पता चला एंड कि वो अरेस्ट हुए हैं। एंड सी, मेरा तो इतना कोई कोई शॉकिंग इतना रिएक्शन नहीं था। किसी ने किसी को इंटेंशनली हिट करके और इतनी तेजी से हिट करके कि किसी की इंसान वहां पे ऑन द स्पॉट डेथ हो सकती थी। तो अगर ऐसा इंसान उस इंसिडेंट के बाद भाग जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके आती है, तो ऑब्वियसली उस इंसान ने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया है, इसलिए उसको अरेस्ट करा है। एंड अरेस्ट करना ही एक सिर्फ एक्शन नहीं होता, दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई थिंक सो जो हुआ है। एंड इसके बाद भी जब तक उनको कोई मतलब सजा नहीं मिल जाती, उनको और उनके साथ के 3 साथियों को, तो तब तक मैं नहीं मानूंगी कि कोई मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है।
9: बट ये मुझे बताइए, एंड आई विल देन कम टू योर फादर, ये बताइए आज जब या उनका लॉयर कहता है नो इट वॉज सिया who was ड्राइविंग रैशली, शी केम इन द वे, I had nothing to do with it. I actually tried to avoid hitting her. क्या कहेंगे?
7: मुझे बहुत देखिए हंसी भी आती है और मुझे बहुत गुस्सा भी आता है। मतलब कैसे वो ये चीज डिनाई कर सकते हैं कि उनकी गलती नहीं थी, और कैसे वो अपने क्लाइंट को सेव कर सकते हैं। जो आज पूरे देश भर में जो वीडियो चल रहा है कि कैसे इंटेंशनली वो मुझे फर्स्ट लेन से एकदम तेजी से अपनी गाड़ी लाके थर्ड लेन में आके मुझे इंटेंशनली हिट करके जाते हैं, मैं पूरे रोड पे काफी दूरी तक घिसटते हुए जाती हूँ। मतलब आज हर जगह से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, मेरी तबीयत के बारे में पूछ रहे हैं, एंड दूसरी जगह वो अपने क्लाइंट को कैसे सेव कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि कैसे वो जस्टिफिकेशन दे सकते हैं ये सारी मीडिया पे।
0: With that, it's a wrap on this edition of Lunch Break. My colleague Anisha Mathur joins you on the other side with the very latest. Do stay tuned to India Today.

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Welcome, you're watching India Today and I'm Anisha Mathur and here are the headlines at this hour. Maharashtra FDA cracks whip on Mumbai's iconic Cafe Mondegar. Cafe loses license after raids. Improper thawing and cooling methods in cafe. From being free to a fee on merchants, India's payment revolution UPI is no longer without a financial burden. 0.4% levy imposed by government for payments above 2,000 rupees. Congress and BJP spar. US moves bill proposing 100% tariffs on India, names India in Russia Sanctions Act bill. But India stands firm, says energy sourcing based on national interest. Big relief for PM Modi's schoolmate Asghar Ali. BJP MLA's company returns land of PM's schoolmate. Days after 81-year-old schoolmate met PM Modi, BJP MLA returns Mumbai suburb land. Pakistan naval ship collides with Indian warship. India protests unprofessional Pakistan Navy conduct. Summons stop Pak diplomat over collision. MEA says no damage reported to Indian warship. Islam's holiest site on Houthi radar. Saudi air defense intercepts Houthi drone. Drone intrusion into Makkah airspace foiled. Saudi says targeting Makkah is a red line. And our big story at this hour. How safe are India's roads when a moment of misjudgment can leave someone fighting for their lives? After Gurugram, another road crash from Greater Noida has surfaced. Two incidents, two chilling videos. A video from September 5th is now going viral, showing a man walking on the road in early hours, dressed in dark clothing. And then a speeding car approaches and hits him. The impact leaves him seriously injured. The driver then allegedly leaves the spot. Police registered a case at the Bisrak police stations under sections 281 and 125B of the BNS, arrested the driver and seized the vehicle. The visuals raise questions, not just about speeding and road safety, but also about visibility and pedestrian safety on the roads in the early hours.
1: हमारी कार साइड में लगी हुई थी और जो केक डिलीवरी बॉय था वो रोड के दूसरी साइड में था तो हिमांशु कार से उतरे और वो केक लेने गए जब वो वापस आ रहे थे तो बाकी बहुत सारी कार्स आ रही थी सब स्लो थी हिमांशु बहुत अच्छे से आ रहे थे और वो जो कार थी टाटा पंच कार वो दूर तक बहुत दूर तक नहीं थी राइट और जब हिमांशु आए तभी एकदम से वो बहुत जल्दी पास में आए मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में थी और हिमांशु को बहुत ही बुरी तरीके से उस कार ने ठोक दिया उनके हाथ में फ्रैक्चर है पूरा हाथ की हड्डी टूटी हुई है पूरा पैर में पूरा रॉड लगा है लेफ्ट लेग पूरा का पूरा फ्रैक्चर बोन्स टूट चुकी है स्पाइन इंजरी हुई है इवन वो बैठ नहीं पा रहे
0: रोड सेफ्टी व्यूअर्स इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ वेरी वेरी सीरियस एरिया ऑफ कंसर्न दीज टू इंसिडेंट्स In a span of just a few days, the videos that are going viral, questions being asked about overspeeding, about driver conduct, road rage, even now, and this video that shows about safety, lighting on the roads, and pedestrian safety in the early hours of a day. Serious questions being raised about why there was not enough lighting, street lighting, which could have possibly saved the life of that pedestrian. At the same time, the question of road rage and driver's responsibility when an incident like this happened. My colleague Arun Tyagi gets us a report on all of these issues.
2: मैं इस समय बिसरख थाने में मौजूद हूँ और यही टाटा पंच गाड़ी है जो 4:10 पे जो अपनी सोसाइटी से एक युवक जो है प्रियांशु नाम का युवक लेके निकलता है और वो नोएडा की तरफ जाता है और उसने तेज रफ्तार टक्कर मार देता है। ये गाड़ी देख लीजिए DL3CCV ये 1050 है। हालांकि इस जो युवक का नाम प्रियांशु है और उम्र लगभग इसकी 24 के करीब है और ये जब केक पार्क लेके जो हिमांशु निकल रहे होते हैं तब ये गाड़ी बहुत तेज टक्कर मारती है और ये गाड़ी रुक सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी रुकती नहीं है और ये आगे चली जाती है।

0: यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: है और इसमें कोई मतलब और ज्यादा पैसा ले रहे, इसी तरह का राहुल गांधी का आरोप है, वो इसमें तथ्य नहीं है। कोई सरकार ने अभी निर्णय ऐसा लिया भी नहीं है। वो किसी व्यापारी को और किसी लोगों को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है। तो राहुल गांधी ने कैसा उनको मालूम हुआ कि हमने तो पैसा उनका ब्याज ले रहे वो बढ़ा रहे करके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: 2000 रुपए तक आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा और उसके ऊपर भी 96% आइटम्स पे आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं लग रहा, और मर्चेंट जो है अगर वो पे कर रहा है कंज्यूमर नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है इसको और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार में मीडिया के मित्रों को और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको और केंद्र सरकार को भी देनी चाहिए, ताकि ये जो भ्रम और भय की स्थिति कांग्रेस खड़ी करने का प्रयास करती है वो नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि जो दुनिया के सबसे बड़ी डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स कोई देश करता है तो भारत करता है। लगभग 50% पेमेंट हम लोग करते हैं।
2: जो भी कंपनी इस प्रकार शोभा ये सेवा देती है सब लोग इसका पैसा भी लेते हैं। तो हमारी सरकार ने जो शुरू किया है UPI का सेवा, लोगों को बहुत सुविधा मिली है, तो उसके लिए एक मिनिमम चार्ज सरकार को लेना चाहिए। एक तो सिस्टमेटिक होना चाहिए, डिसिप्लिन, दूसरा सरकार के पास रिवेन्यू भी आएगा।
3: वॉट एवर मोदी गवर्नमेंट इज नॉट अ वेलफेयर गवर्नमेंट, इट्स प्योरली अ बिजनेस माइंडेड गवर्नमेंट, यू कांट एक्सपेक्ट अ बेटर अप्रोच फ्रॉम देम।
4: ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
5: Remember that for the Modi government, especially the UPI digital ecosystem has been one of the most prominent achievements to boast about. And that's what Prime Minister Modi had done in New Zealand in the month of July. We dug out what Prime Minister Modi had said about the UPI system in India that's being really tracked over by across the world. Here's what PM Modi had said.
6: Aaj ka Bharat duniya ko vikas ke naye model bhi de raha hai. आज भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म का सफल संचालन कर रहा है। आज भारत में UPI के माध्यम से हर महीने अरबों डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आज दुनिया के दर्जनों देश दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
5: बट लेट्स गो बैक इवन फर्दर। इन 2016 This is what Rahul Gandhi had to say about the UPI.
7: There's the whole concept of the PayTM, pay to Modi. That's the idea behind cashless economy, that a few people should get maximum benefit from every single cash transaction. That is what is going on. It has damaged the country tremendously. It has hurt a lot of people, and it has specifically hurt the poor people. So it has devastated especially the poor people, farmers, fishermen, daily wage laborers, everybody has been hurt by this.
5: Political showdown aside, what are the industry members saying over this UPI charge? My colleague Anjali Pandey spoke to Rohit Mahajan. He's the founder of Plutos, and here's what he was saying.
8: Rohit Mahajan, help us understand this 0.4% levy on UPI transactions above 2,000 rupees from a merchant's point of view. What changes for the merchants?
9: So, very nice. You want me to tell you the basics of the UPI first. So, UPI is actually two things. One is P2P and second is P2M. What is P2P? P2P is when I transfer you a money or you transfer me a money, this is person to person. So there is no charge

0: से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
0: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआर। अब मैं क्या ही बोलूं?
3: परिवार अटूट भरोसा।
4: For India to hedge against the changing order, including from the United States, despite our long-standing difficulties with China, there is no wishing away our neighborhood. So I think the BRICS, from an economic construct, remains relevant for a country which has been denied its place in the UN Security Council for decades now, and perhaps the search for alternatives is the need of the hour.

0: Welcome back, ladies and gentlemen. Now time for all the top crime stories of the country and the world. After Gurugram, something happened in Greater Noida. And again, is it a case of road rage? Possibly a mere accident? Or perhaps something that as drivers we need to really think about very closely? Look at this image. We've seen what's happening in Gurugram. But what happened in Greater Noida is also raising a question. Is it about road safety? Is it about lack of traffic signals? Or is it also about our laxity? This is September 5. And during early hours, there was a man that's seen walking across the street. And a speeding vehicle comes. For some strange reason, the driver of the vehicle is either unable to see the individual or not brake in time and hits him. The man, as you can see, even is flung in the air in a manner that he goes beyond and outside of the camera frame. He has suffered serious injuries, though he has survived and is recovering. Case has been registered. And we are told that the accused has been arrested, especially because he fled from the location. But it's also led to a social media debate, if I'm honest about this visual. Many are asking, yes, the driver is speeding and is at fault. But the man, during nighttime, wearing, as you can see, dark clothes, there are not proper light in that area, on that lane, and is walking too slowly for a busy traffic street. So are both at fault. Nevertheless, because the victim has suffered serious injuries, Bishrok Police has registered the case. The driver has been arrested because you can clearly see compared to other vehicles, this driver was also speeding. Let's take a look at some reactions coming in.
1: हमारी कार साइड में लगी हुई थी और जो केक डिलीवरी बॉय था वो रोड के दूसरी साइड में था तो हिमांशु कार से उतरे और वो केक लेने गए जब वो वापस आ रहे थे तो बाकी बहुत सारी कार आ रही थी सब स्लो थी हिमांशु बहुत अच्छे से आ रहे थे और वो जो कार थी टाटा पंच कार वो दूर तक बहुत दूर तक नहीं थी राइट और जब हिमांशु आए तभी एकदम से वो बहुत जल्दी पास में आए मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में थी और हिमांशु को बहुत ही बुरी तरीके से उस कार में ठोक दिया उनके हाथ में फ्रैक्चर है पूरा हाथ की हड्डी टूटी हुई है पूरा पैर में पूरा रॉड लगा है लेफ्ट लेग पूरा का पूरा फ्रैक्चर बोन्स टूट चुकी है स्पाइन इंजरी हुई है इवन वो बैठ नहीं पा रहे
2: मैं इस समय बिसरक थाने में मौजूद हूँ और यही टाटा पंच गाड़ी है जो 4:10 पे जो अपनी सोसाइटी से एक युवक जो है प्रियांशु नाम का युवक लेके निकलता है और वो नोएडा की तरफ जाता है और उसने तेज रफ्तार टक्कर मार देता है ये गाड़ी देख लीजिए DL3CCV1050 है हालांकि इस जो युवक का नाम प्रियांशु है और उम्र लगभग इसकी 24 के करीब है और ये जब केक पार्क लेके जो हिमांशु निकल रहे होते हैं तब ये गाड़ी बहुत तेज टक्कर मारती है और ये गाड़ी रुक सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी रुकती नहीं है और ये आगे चली जाती है और ये पूरी घटना जो हिमांशु की पत्नी साथ में होती है उनकी गाड़ी बिल्कुल नजदीक खड़ी होती है और उसमें डैश कैम जो लगा है उस डैश कैम में पूरी ये घटना रिकॉर्ड हो जाती है जो कि 4:15 के करीब की है 5 सितंबर की सुबह को उसके बाद पत्नी जो तहरीर देती है और बताती है कि मेरे पति केक लेकर वापस आ रहे थे और एक गाड़ी आती है उस गाड़ी जो जोड़ा टक्कर मारती है जिसको हिमांशु गंभीर चोटें आई हैं हालांकि हिमांशु इस समय बिसरक में ही एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और लेकिन सबसे बड़ी बात है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है
0: I would now take you to the United States of America via Hyderabad. A young man from Hyderabad, now settled in Massachusetts, was found dead in suspicious circumstances. The Member of Parliament from Hyderabad, Asaduddin Owaisi, has now written a letter seeking counsellor intervention and help for the mortal remains to be returned of Jabir Hussain Mohammed. He was residing in Massachusetts. His parents are in India who were informed about the death on 14 September. But strangely, the circumstances and the cause of the death are not known to the family. So the letter has been sent by the AIMM president, who is also Member of Parliament from Hyderabad, requesting Indian counsellor to urgently intervene and extend assistance. He's requesting the counsellor to facilitate the mortal remains to be returned to Hyderabad to the family for the final rites. But it's raising a question mark also. Is there a certain kind of issue, whether it's racism or any sort of problem that's coming in with regard to Indian immigrants in the USA? Break, close. we'll be tracking data and more on the latest, heading into a very short break. When we return, I tell you about the news for our special viewers who are hearing impaired. Thank you for watching the news break. Take care. Stay tuned.

मेरा नाम राजीव चानन है और मैं फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ह्यूमेंडस टेक्नोलॉजीज का, जो 2018 में हम लोगों ने फॉर्म की थी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट। तो दिल्ली का 1500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, करीब 1,00,000 लीटर पेट्रोल, डीजल और CNG एवरी डे कंज्यूम होता है। तो जनरली दिल्ली की डायमेंशन इज वेरी बिग इफ यू लुक इट फ्रॉम पोल्यूशन स्टैंड पॉइंट। तो नॉट ओनली कंट्रोलिंग AQI बट कंट्रोलिंग एक्सपोजर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इन इफेक्ट दिल्ली रिक्वायर इन अवर ओपिनियन ए परमानेंट स्ट्रक्चर, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन विच इज कमिंग। तो हम लोगों की टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप एक्सपोजर रिडक्शन कैसे कर सकते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी थ्रस्ट, न्यू पॉलिसीज आर वेरी गुड टू कंट्रोल ओवरऑल एम्बिएंट टू रिड्यूस पोल्यूशन। APS स्टैंड फॉर एम्बिएंट प्योरिफिकेशन सिस्टम। इट इज पार्टली मेंट फॉर पार्टिकुलेट मैटर। एन आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट वी आर सपोज टू मेक ए सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी फॉर आउटडोर वेयर यू इंस्टॉल इट वंस and it should continue to run without any attention, intervention for 15-20 years. Because the minute you put something in outdoor, it has to be sustainable and it should not require frequent attention. And we designed the storage capacity to be roughly 3-5 years so that nobody needs to go in and service the equipment, you know, every now and then. It would once required in 1 in 3 years or 1 in 5 years. And then particulate matter, safe disposal of the material. So we still need to figure out what does it contain. It may contain many other particles, many other elements which may not be good for human health. So it has to be disposed. So idea behind was that we should reduce exposure to the people, and hence the machine should come closer to the people wherever in outdoor. There are large people like ISBT, railway station, marketplaces. We should bring equipment closer to the people, reduce their exposure. APS में किसी भी तरह का कोई भी फिल्टर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आउटडोर में जो सबसे बड़ी समस्या आती है फिल्टर की, कि वो ये 2 या 3 दिन में चोक हो जाते हैं या उनकी परफॉर्मेंस एयर डिलीवरी कम हो जाती है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 15 साल तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहता है सभी पोल्यूशन लेवल पे और सभी वेदर कंडीशन में। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बारिश में इसकी परफॉर्मेंस कम हो गई या समर में बढ़ गई या विंटर में बढ़ गई या कम हो गई, ऐसा नहीं है। इसमें जो प्रिंसिपल हम लोगों ने यूज किया वो बेसिक फिजिक्स का प्रिंसिपल था कि आपका जो पार्टिकुलेट मैटर होता है दैट इज हैवियर देन एयर मॉलिक्यूल्स। तो आप इसमें एयर सक करते हैं इन ए पर्टिकुलर वेलोसिटी विद ए पर्टिकुलर एंगल, सो दैट जो हैवियर मेटल होते हैं, हैवियर पार्टिकल होते हैं PM2.5 एंड PM10, they cannot travel the path of the air being taken into the system. So they tend to get separated from the balance air. So ये इसका, और वो agglomerate भी होते हैं। तो इसमें जो हम लोगों ने wind tunnel design की है उसमें 2 aspect होते हैं, एक तो वो agglomerate करती है और दूसरा उन heavy particle की velocity को reduce करती जाती है और एक जगह पे आके उसकी velocity 0 हो जाती है, वो अपने आप settle हो जाते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है जिसमें हैवी पार्टिकल को बिना किसी फिल्टर के हम सेपरेट कर पाते हैं।

कि मेरे को वॉशरूम आ रहा था इसलिए मैंने गाड़ी तेज भगाई। वॉशरूम आ रहा था तो गाड़ी रोक भी सकते थे, स्लो भी कर सकते थे और वॉशरूम कर सकते थे। क्या रात भर वॉशरूम नहीं करा, ये कौन सा नॉनसेंस बयान है कि वॉशरूम के कारण गाड़ी भगा रहा था। नोएडा की कोर्ट में गए थे जहां पर शिवानी चौहान जी का सिया का 164 के बयान हुए और जज साहब के सामने हुए। उसके बाद उनका मेडिकल के लिए उनको वहां सेंटर जो वहां का हॉस्पिटल है वहां भेजा गया। और जब हम वहां पहुंचे तो काफ़ी मतलब 6 या 7 बज गए थे। तो वहां पर उनकी MLC बनी, जहां जहां उनके चोट लगी थी वो बताया, उन्होंने एक कार्ड दिया। रात को भी काफ़ी पेन रही है सिया के, क्योंकि चोट लगने के बाद में पता चलता है कि कहां कहां चोट लगी हुई है, गुम चोट उसकी आई हुई है काफ़ी। और अभी वो कुछ देर के बाद यहीं पे दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में होली फैमिलीज में जाकर अपना जो भी एक्सरे हैं, MRI है, जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाई है।

0: लोगों से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
1: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के ये कंगन सेनको से ही लिए थे,
2: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
0: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआर।
1: अब मैं क्या ही बोलूं?
3: परिवार अटूट भरोसा।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: वी डू नीड नॉट जस्ट एन एंटी वेस्टर्न फोरम बट सम फोरम दैट क्वेश्चंस व्हाटएवर इज हैपनिंग इन दीज डोमिनेंट G7 कंट्रीज दैट्स देयर which is trying to shape the world order, the emerging world order in its own way.

0: यूपीआई में तो ऐसा है कि भाई 2000 तक जो व्यापारी लोग होते हैं वो 2000 तक उसकी सीमा है और उसमें कोई मतलब और ज्यादा पैसा ले रहे इसी तरह का राहुल गांधी का आरोप है वो उसमें तथ्य नहीं है। कोई सरकार ने अभी निर्णय ऐसा लिया भी नहीं है। वो किसी व्यापारी को और किसी लोगों को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है। तो राहुल गांधी ने कैसा उनको मालूम हुआ कि हमने तो पैसा उनका ब्याज ले रहे बढ़ा रहे करके तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
1: 2000 रुपये तक आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा और उसके ऊपर भी 96% आइटम्स पे आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं लग रहा और मर्चेंट जो है अगर वो पे कर रहे कंज्यूमर नहीं कर रहा तो मुझे लगता है इसको और जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार में मीडिया के मित्रों को और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको और केंद्र सरकार को भी देनी चाहिए ताकि ये जो भ्रम और भय की स्थिति कांग्रेस खड़ी करने का प्रयास करती है वो नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि जो दुनिया के सबसे बड़ी डिजिटल ट्रांजैक्शन डिजिटल पेमेंट्स कोई देश करता है तो भारत करता है। लगभग 50% पेमेंट हम लोग करते हैं।

0: A miracle, a blessing, or hard work being duly recognized and rewarded, or a combination of all these factors, including divine intervention. Hanuman Ansh, a film made with a modest budget of about 2 crore, that earned barely 10 lakh on its opening day, has emerged as one of the most profitable releases of the decade. The returns estimated at nearly 140 times the production cost. Hanuman Ansh, directed by Dr. Vishal Chaturvedi, and stars Shobhanav Satya and Chandan Anand in key roles. The director, Vishal Chaturvedi, Dr. Vishal Chaturvedi, joins me on this special broadcast. And before I bring him into this conversation, let me rattle off some of the statistics that the film world actually considers a dream come true. On day 40, Hanuman Ansh collected a net of 8.25 crore rupees across 9,175 shows. And this brings the film's total India net collection to 231 crore rupees plus. The total India gross for Hanuman Ansh stands at 272.9 crore and counting across 137,549 shows since the release. And it continues to run to packed halls. Amazing. Let me quickly bring into this conversation Dr. Vishal Chaturvedi. Dr. Saab, bohat bohat badhai, shubhkamnaye, many congratulations. Sir, is this your hard work being rewarded, or is this a miracle?
1: सीताराम सबसे पहले धन्यवाद बहुत मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाने के लिए सो आई विल से बिफोर आई गो इनटू वेदर दिस वाज अ हार्ड वर्क और दिस हैड दिस बिकेम अ मिरेकल आई वुड लाइक टू सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पे माय ग्रेटिट्यूड सो इन आवर ऑफिस दिस इज द लाइन इट्स रिटन ऑल दिस व्होमसोएवर कम्स एंड यू नो पुट्स हिज हार्ड वर्क और मनी और efforts matter and I will say everyone who has put their effort or efforts to bring people to theaters because that would have not been possible from our promotional monies and this happened so that everyone who has made their reels or they talked about the film in their drawing rooms or offices and they took school kids and everyone like the kids took their grandparents and grandparents took their kids in one of the screenings when we were like hopping theaters so I asked how many grandparents brought their granddaughters and sons so there were some plenty amount of people and then I asked the reverse question how many grandsons brought their grandfathers or granddaughters brought their grandfathers so there were plenty of kids And I said, the circle is completed. That's what I wanted.
0: परिवारों को जोड़ रहे हैं कितनी सुंदर बात आपने कही ये परिवार जुड़ रहे हैं पीढ़ियां जुड़ रही हैं बट टेल मी दिस यू नो एज अ गुड डॉक्टर आपने नब्स पकड़ ली ऑडियंस की व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मेक अ फिल्म ऑन नीम करोली बाबा एंड दिस नेम हनुमान अंश
1: सो नीम करोली बाबा हिमसेल्फ आफ्टर फिनिशिंग माय एमबीबीएस आई मेट विद अ sort of a miraculous event which I today call at Leela because miracles happen at instant and Leelas happen over the period of multiple years and decades. I was doing my first job in Haldwani and then our car, a few friends, we were traveling to random places near Nainital and our car suddenly stops at a place and then when the rain stops and the sunlight comes because we were not able to see anything before. I opened my door and my door opens under Kachi Dham's gate. And that intrigued me so much that it was literally an invitation inside the temple.
0: Wow.
1: And from that day onwards, I've been following this. So I'll say, I believe that Maharaji wanted me to make this film. And he kept guiding me and kept putting me in situations where I had to find a unique way to get out of that situation and always a unique reaction which came inside my mind. And then I kept following those paths. I'll completely, you know, in a very, very surrender mode, I always say this, that it is Maharaji's guidance under which we made this film and probably where it reached.
0: क्या बात है, पूर्ण समर्पण, मतलब devotion, आस्था और पूर्ण समर्पण ईश्वर को पाने के लिए इससे ज्यादा अच्छा मार्ग क्या हो सकता है. But tell me this, sir, from the sets to the music to the storytelling, how much of this is your spiritual journey, your spiritual experience that went into the making of Hanuman Ansh?
1: So when I was very young, I was 22 or 23, I was going through some basic health issues, and my mother tells me that you need to basically meditate and you need to do dhyana. And my mother has been a constant source of spiritual information all through my life. And she keeps, you know, calling me in every monthly or two monthly, and she will give me a lowdown of what all she got to know about Kriya Yoga and this and Dhyana and Kundalini, all of that. So because of her constant, you know, sort of a उनके निरंतर प्रयास से ऐसा होता रहा कि मेरे अंदर जो स्पिरिचुअलिटी वो हरदम ग्रो करती रही, और मैंने बहुत सारी चीजें खुद भी ध्यान करते वक्त जो भी एक्सपीरियंस किया, और वो मुझे कहीं ना कहीं बिलीव कराता है कि देयर इज दिस वर्ल्ड जो आपके अंदर ही है, जो आपके इनसाइड ही है, जो आपके आपके आपके बाहमुखी जहाँ होके अंतर्मुखी होने से, या अंतर्मुखी होने का मतलब कहने का मतलब नॉट एज अ नेचर, बट आपके अंतर अपने अंतर को देखने को
0: पहचानने में,
1: आपकी जर्नी जो है ना वो अंदर भी बहुत बड़ी जर्नी छुपी है, जिसको स्पिरिचुअल जर्नी हम बोलते हैं. अमोन, आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारा इस बारे में कॉन्वर्सेशन में मिलेगा.
0: नहीं, बहुत से मेरे मित्र ये बता भी रहे, और माँ सोचिए ना कि हमारी संस्कृति में कौशल्या माँ, देव की माँ, यशोदा माँ, जीजाबाई माँ, माँ की कितनी बड़ी भूमिका है पुत्रों को आगे ले जाने में और उनके उनके जीवन को संवारने में.
1: जी, तो वो उसी उसी लय पे और उसी जो है ना उसी तारतम्य में मैं आगे बढ़ता रहा. और बहुत, चूंकि मैं अलग अलग जगहों पे उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पे रहा हूँ, और बुंदेलखंड में मैं पैदा हुआ, और बुंदेली गीतों से मेरा अपना भी बहुत नाता है. और मैं हरदम जो भी मैं कंटेंट लिख रहा था या मैं डायरेक्ट करने वाला था, उस समय कहीं ना कहीं वो बुंदेल के आलाज, आला खंड और बुंदेल की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं इनकल्केट करना चाहता था. और साधु तिवारी जो मेरे मित्र भी है, और सुनील लोधी जिसको मैंने फाइंड किया ऑन इंटरनेट, एंड आई कॉल्ड हिम टू द सेम ऑफिस वेयर वी आर सिटिंग, वेयर आई एम टॉकिंग फ्रॉम, एंड ओवरनाइट आई बेसिकली आस्क्ड हिम फॉर द सॉन्ग्स, एंड दिस वन आई रियली लव्ड, एंड वी रिकॉर्डेड द वेरी नेक्स्ट डे, बिकॉज़ ही वाज सपोज्ड टू गो बैक टू हिज होम टाउन बाय ट्रेन. सो इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स वी रिकॉर्डेड, एंड दिस बिकेम द बिगेस्ट सॉन्ग, आई मीन यू कैन से.
0: And even, can I request you when it comes out, when you sing it, it comes out from your soul, you know. Can you, for the benefit of our viewers, sing the lines of Ma Parvati Parvati for us?
1: Jab zid pe aa gayi Parvati Parvati Parvati, samjhane pahunche saptarishi सप्तऋषि सप्तऋषि, काय जिद कर रही, अरे काय खुमर रही, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे भर के लाने जाके शीश पे गंगा, और गले में डारे फिर रे सांप, जाके शीश पे गंगा और गले में डारे फिर रे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ भोलेनाथ. शंभो शिव शंभो
0: शिव शंभो शिव शंभो. इट्स सो ब्यूटीफुल, इट एक्चुअली एंटर्स योर सोल, इट्स सो ब्यूटीफुल. और आप बिल्कुल दिल से ये गा भी रहे हैं. बट यू नो, सिंस यूर अ डॉक्टर एंड सिंस यू सेड यू नो हेल्थ, माँ ने जो आशीर्वाद दिया, क्योंकि वी आई एटलीस्ट बिलीव यू नो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, इज दैट ऑल्सो योर लाइफ स्टोरी? चैंटिंग लॉर्ड हनुमान्स नेम डिस्ट्रॉयज ऑल पेन ऑल डिजीजेस, दैट्स द मैसेज?
1: यस, भगवत भक्ति में और हनुमान जी जो है बहुत पिवोटल रोल प्ले करते हैं. जैसे कि हनुमान चालीसा में लिखा है कि राम द्वारे तुम हमारे होत ना आज्ञा बिन पैसारे, एज एन आप उनकी उनकी भक्ति या उनके उनसे परमिशन लिए बिना आप जा नहीं सकते. वो अनदर लाइन कॉल्ड राम रसायन तुमरे पास, आपके पास ही फॉर्मूला है
0: सदा रहो रघुवती के दासा.
1: फॉलो अप लाइन इज तुम्हारे भजन राम जी को पावे। तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो पहले तो आप भक्त होता क्या है ये समझोगे, क्योंकि भक्ति क्या होती है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो। अगर आप भक्ति सीखोगे नहीं तो आप भक्ति में डूबोगे कैसे। तो वो आपके सबसे आइडियल टीचर भी है, और चूंकि वो भगवान शिव के स्वयं रुद्र अवतार, 11वें रुद्र अवतार हैं, और जैसा बोला जाता है कि आप निरंतरता में किसी चीज का सुमिरन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, एज ए निरंतरता में हनुमत पीरा, जैसा ना तो लाइन जहाँ पे वो सुमिरन का शब्द आता है, इसी फॉलो अप लाइन से और देवता चित्त में हनुमत से सब सुख रहे, सब सुख सह लहे तुम्हारे सुन जो तुम रक्षक का वो बनना, और देवता चित्त में हनुमत से सब सुख रहे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो
0: सुख रहे हनुमत बलबीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुबरे हनुमत बलबीरा।
1: तो मेरा बिलीव यही है जी कि सब जो है ना एंड ऑफ द डे नीम करोली बाबा एक ऐसे संत थे, ऐसे महात्मा थे, ऐसे ऐसे हायर बीइंग थे, हम एक्चुअली उनको अवधूत जिनको बोलते हैं, वो ऐसे ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको आपको एक्चुअली पता करना कि वो कहाँ किस लेवल पे थे आपके बस की बात नहीं है। आप बोल तो सकते हो, आप इमेजिन भी कर सकते हो, लेकिन आपके बस की बात नहीं, आपके रीत से बहुत बाहर है। तो लेकिन वो क्या सिखाते थे, वो क्या समझाते थे, वो क्यों हनुमान चालीसा पढ़ने, सुंदरकांड पढ़ने और सीताराम बोलने, सीताराम लिखने, राम राम लिखने पे ही ज्यादा जोर देते थे, और क्यों हनुमान जी की मूर्तियां लगाते थे, इसी सब में सब कुछ छुपा है। एंड प्रॉब्ली फिल्म हमारा मैंने वही डिकोड करने की कोशिश पूरी फिल्म में की है।
0: वाह। एंड ऑन डे 40 हनुमान अंश द नेट कलेक्शन स्टैंड एट 8.25 करोड़ रुपीज, इफ आई मे, इफ वी कंपेयर इट टू धुरंधर व्हिच अगेन वाज अ स्पेक्टेकुलर फिल्म, 2.6 crore is what it got in the same period. Pathaan was at 2.55 crore. So is this word of mouth publicity that has a bigger impact, Vishalji, than even those massive promotions?
1: I believe the massive promotions are done. If I can talk about the box office dynamics, what happens that when you have your film, a theatrical run for a week, first week, the film goes to people respond to the film that okay, it's a good film or it's a average film, it's a great film, and then from there the word of mouth picks. For that first week collection or first week people going to the theater, you need massive promotions. And because it's all across the country, and we face the problem, I understood that it's not that easy game, that you just simply release your film and then you expect people to, you know, just respond to it, and then they will start giving you word of mouth. Attention span is so less today, in today's time, that you can't expect people to, you know, go and talk about your film or like all the way they're asking, giving their testimonies. So, no, go watch this film. I will pay for you, this thing. So things like that started happening when people found that this film, it's a good film, and then it's reduced to 25 theaters, they are not getting tickets. And they are traveling from to some, because the locations of those theaters were so odd that people have to travel, some of the people traveled to 200 kilometers to watch the film. I've met such people.
0: Wow.
1: And this is happening the second week when they were getting word of mouth, and then they are not getting the movie to watch. So the demand surged so much. And the second week, the other two films, one of the films was not doing well.
0: Correct.
1: And because of which, the theater owners, you know, started opening shows for Hanuman Ansh. And also the Cinepolis, who's the distributor, they were also pitching their film. And from there onwards, it never looked back. It kept growing only. As soon as they opened theaters, people just rushed and then they started watching the film. But in those first 2 weeks, the word of mouth grew. But we could have literally failed and, you know, fell on our nose. But somehow, you know, God saved it. So when you say miracle, yes, there is a sort of a miracle, nothing less than a miracle. But I'd like to thank everyone who has, you know, put their effort to make the reels and make, you know, talked about the film.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: EU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money, every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है. ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
5: ये है एक लेगेसी. मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
6: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां.
7: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA.
8: अब मैं क्या ही बोलूं?
9: परिवार अटूट भरोसा.
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
10: Where BRICS as a club has a huge GDP, they have a lot of deliverables, they're delivering a lot, but it is primarily bilateral in nature or national in nature as what a country does, rather than what a country brings to BRICS.

0: न्यू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa.

0: CBU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: कि मेरे को वॉशरूम आ रहा था इसलिए मैंने गाड़ी तेज भगाई। वॉशरूम आ रहा था तो गाड़ी रोक भी सकते थे, स्लो भी कर सकते थे और वॉशरूम कर सकते थे। क्या रात भर वॉशरूम नहीं करा, ये कौन सा नॉनसेंस बयान है कि वॉशरूम के कारण गाड़ी भगा रहा था। नोएडा की कोर्ट में गए थे जहां पर शिवानी चौहान जी का सिया का 164 के बयान हुए और जज साहब के सामने हुए। उसके बाद उनका मेडिकल के लिए उनको वहाँ सेंटर जो वहाँ का हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया। और जब हम वहाँ पहुँचे तो काफ़ी मतलब 6 या 7 बज गए थे। तो वहाँ पर उनकी MLC बनी, जहाँ जहाँ उनके चोट लगी थी वो बताया, उन्होंने एक कार्ड दिया। रात को भी काफ़ी पेन रही है सिया के, क्योंकि चोट लगने के बाद में पता चलता है कि कहाँ कहाँ चोट लगी हुई है, गुम चोट उसकी आई हुई है काफ़ी। और अभी वो कुछ देर के बाद यहीं पे दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में होली फैमिलीज में जाकर अपना जो भी एक्सरे हैं, MRI है, जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाई है।

0: Spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
4: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
5: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
6: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
3: इसीलिए सेनको इंडिया का
7: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
4: अब मैं क्या ही बोलूं?
8: परिवार अटूट भरोसा।
0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: It's a new chapter in Kerala. A new leader, a new promise. What is V.D. Satheesan's vision for Keralam? The Keralam he dreams of, the politics that will shape it, and the road ahead. Catch the India Today Roundtable Keralam, 17 September, all through the day, only on India Today.

0: state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU! सोच बदलो और बैंक भी।

0: करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Let's turn from there to tonight's Get Real India story, which comes from Katihar in Bihar, where floods have shut down schools across several parts of Bihar. But in Katihar, one teacher is making sure learning doesn't stop. What's the formula? Well, the classroom has moved from the school to a boat. Take a look.
1: This is a primary school in Raghunathpur village in Bihar's Katihar district, among the worst hit by floods. While the school is shut, a private tutor has taken the initiative to ensure the learning does not stop. Mohammed Sahib conducts classes on a boat.
2: जब कोचिंग में पानी घुस गया, पानी घुसने के 2-3 दिन तक तो हम पढ़ाई ठप कर दिए, लेकिन लगा कि नहीं पढ़ाई रोकने से तो बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। इस वजह से हम सोचे कि चलो बच्चों का हम सब नाव में हिला करके हम लोग क्या करें, शिक्षा ग्रहण कराएं बच्चे को। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो भी स्किल रहेगा डेवलपमेंट होता रहेगा, और ऐसे रुक जाने से क्या होता है कि जो पढ़ाते हैं वो भी भूल जाता है बच्चे।
1: The students claim their homes are also underwater. The school kids say their parents have allowed them to attend classes as the water is shallow.
3: क्यों नाव पे पढ़ाई करते हो, डर वर नहीं लगता?
4: नहीं, यहाँ कम पानी है और पूरा गांव में पानी हो गया, घर में, रोड में, सड़क में, कोचिंग में, सब जगह पानी हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ सर यहाँ लाके पढ़ाते हैं।
3: यहाँ पे किसी तरह का कोई डर वर लगता है?
4: नहीं, यहाँ पे पानी कम है इसलिए डर नहीं लगता है।
3: तो फिर ऐसे में सर कितना देर पढ़ाई करवाते हैं?
4: 1-1.5 घंटा।
3: पढ़ने में मन लगता है?
4: यस।
3: बाढ़ है, बाढ़ में घर में भी पानी है,
4: है।
3: पढ़ना जरूरी है।
4: हाँ।
1: While the floods have derailed schooling in many parts of Bihar, in Raghunathpur, Mohammed Sahib has kept the light burning. With Bipul Rahul, Bureau Report, India Today.
0: Okay, just about enough time left to leave you with our image of the day. And it's a remarkable visual because the soldier-canine bond taken to new heights quite literally. Take a look at these images. From brutes on the ground to paws in the sky, an Indian Army paratrooper from the Surya Command has carried out a tandem parachute jump with a dog handler and his combat canine carrying a full combat load. The Army says the feat showcases trust, teamwork and combat readiness, with the canine now trained for operations from the ground to the skies. We leave you with that image. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubhratri. Jai Hind. Namaskar.

0: miracle, a blessing, or hard work being duly recognized and rewarded, or a combination of all these factors, including divine intervention. Hanuman Ansh, a film made with a modest budget of about 2 crore, that earned barely 10 lakh on its opening day, has emerged as one of the most profitable releases of the decade. The returns estimated at nearly 140 times the production cost. Hanuman Ansh, directed by Dr. Vishal Chaturvedi, and stars Shobhanav Satya and Chandan Anand in key roles. The director, Vishal Chaturvedi, Dr. Vishal Chaturvedi, joins me on this special broadcast. And before I bring him into this conversation, let me rattle off some of the statistics that the film world actually considers a dream come true. On day 40, Hanuman Ansh collected a net of 8.25 crore rupees across 9,175 shows, and this brings the film's total India net collection to 231 crore rupees plus. The total India gross for Hanuman Ansh stands at 272.9 crore and counting across 137,549 shows since the release. And it continues to run to packed halls. Amazing. Let me quickly bring into this conversation Dr. Vishal Chaturvedi. Dr. Saab, bohat bohat badhai, shubhkamnaye, many congratulations. Sir, is this your hard work being rewarded, or is this a miracle?
1: सीताराम सबसे पहले धन्यवाद बहुत बहुत मुझे इस इस प्रोग्राम पे बुलाने के लिए सो आई विल से बिफोर आई गो इनटू वेदर दिस वाज अ हार्ड वर्क और दिस हैड दिस बिकेम अ मिरेकल आई वुड लाइक टू सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पे माय ग्रेटिट्यूड सो इन आवर ऑफिस दिस इज द लाइन इट्स रिटन ऑल दिस व्होमसोएवर कम्स एंड यू नो पुट्स हिज हार्ड वर्क और मनी और efforts matter. I will say everyone who has put their effort or efforts to bring people to theaters, because that would have not been possible from our promotional monies. And this happened so that everyone who has made their reels, or they talked about the film in their drawing rooms or offices, and they took school kids and everyone, like the kids took their grandparents and grandparents took their kids in one of the screenings when we were like hopping theaters. So I asked how many grandparents brought their granddaughters and sons. So there were some plenty amount of people, and then I asked the reverse question: how many grandson brought their grandfathers, or granddaughters brought their grandfathers? So there were plenty of kids. And I said, the circle is completed. That's what I wanted.
0: परिवारों को जोड़ रहे हैं. कितनी सुंदर बात आपने कही. ये परिवार जुड़ रहे हैं, पीढ़ियां जुड़ रही हैं. But tell me this, as a good doctor, आपने नब्स पकड़ ली ऑडियंस की. What inspired you to make a film on Neem Karoli Baba and this name, Hanuman Ansh?
1: So Neem Karoli Baba himself. So I after finishing my MBBS, I met with a sort of a miraculous event which I today call at Leela, because miracles happen at instants and Leelas happen over the period of multiple years and decades. Maharaj's I was doing my first job in Haldwani, and then our car, a few friends, we were traveling to random places near Nainital, and our car suddenly stops at a place, and then when the rain stops and the sunlight comes, because we were not able to see anything before, I open my door, and my door opens under Kachi Dham's gate. And that intrigued me so much that it was literally an invitation inside the temple.
0: Wow.
1: And from that day onwards, I've been following this. So I'll say, I believe that Maharaji wanted me to make this film. And he kept guiding me and kept putting me in situations where I had to find a unique way to get out of that situation, and always a unique reaction which came inside my mind, and then I kept following those paths. So I'll completely in a very, very surrender mode, I always say this, that it is Maharaji's guidance under which we made this film and probably where it
0: reached.
1: क्या
0: बात है, पूर्ण समर्पण, मतलब devotion, आस्था और पूर्ण समर्पण ईश्वर को पाने के लिए इससे ज्यादा अच्छा मार्ग क्या हो सकता है. But tell me this, sir, from the sets to the music to the storytelling, how much of this is your spiritual journey, your spiritual experience that went into the making of Hanuman Ansh?
1: So when I was very young, I was 22 or 23, I was going through some basic health issues, and my mother tells me that you need to basically meditate and you need to do dhyana. And my mother has been a constant source of spiritual information all through my life. And she keeps, you know, calling me in every monthly or two monthly, and she will give me a lowdown of what all she got to know about Kriya Yoga and this and Dhyan and Kundalini, all of that. So because of her constant, you know, sort of a unke nirantar prayas se aisa hota raha ki mere andar jo spirituality wo hardam grow karti rahi, aur maine bahut sari cheezein khud bhi dhyan karte waqt jo bhi experience kiya. और वो मुझे कहीं ना कहीं बिलीव कराता है कि देयर इज दिस वर्ल्ड जो आपके अंदर ही है, जो आपके इनसाइड ही है, जो आपके आपके आपके बाहमुखी जहां होके अंतर्मुखी होने से, या अंतर्मुखी होने का मतलब कहने का मतलब नॉट एज अ नेचर, बट आपके अंतर अपने अंतर को देखने को
0: पहचानने में
1: पहचानने आपकी जर्नी जो है ना, वो अंदर भी बहुत बड़ी जर्नी छुपी है जिसको स्पिरिचुअल जर्नी हम बोलते हैं. अमोन, आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारा इस बारे में कॉन्वर्सेशन में मिलेगा.
0: नहीं, बहुत से मेरे मित्र ये बता भी रहे, और माँ सोचिए ना कि हमारी संस्कृति में कौशल्या माँ, देव की माँ, यशोदा माँ, जीजाबाई माँ, माँ की कितनी बड़ी भूमिका है पुत्रों को आगे ले जाने में और उनके उनके जीवन को संवारने में.
1: जी, तो वो उसी उसी लय पे और उसी जो है ना उसी तारतम्य में मैं आगे बढ़ता रहा. और बहुत, चूंकि मैं अलग अलग जगहों पे उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पे रहा हूँ, और बुंदेलखंड में मैं पैदा हुआ, और बुंदेली गीतों से मेरा अपना भी बहुत नाता है, और मैं हरदम जो भी मैं कंटेंट लिख रहा था या मैं डायरेक्ट करने वाला था उस समय कहीं ना कहीं वो बुंदेल के आलाखंड और बुंदेल की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं इनकल्केट करना चाहता था. और साधु तिवारी जो मेरे मित्र भी है, और सुनील लोधी जिसको मैंने फाइंड किया ऑन इंटरनेट, and I called him to the same office where we are sitting, where I'm talking from. Overnight, I basically asked him for the songs, and this one I really loved. And we recorded the very next day because he was supposed to go and go back to his hometown by a train. So in half an hour, 45 minutes, we recorded, and this became the biggest song, I mean, you can say, today.
0: And even, can I request you, when it comes out, when you sing it, it comes out from your soul, you know. Can you, for the benefit of our viewers, sing the lines of Maa Parvati, Parvati for us?
1: Jab jid pe aa gayi Parvati, Parvati, Parvati, samjhane pahunche saptrishi, saptrishi, saptrishi, kaay zid kar rahi, are kaay khumar rahi, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे भर के लाने जाके शीस पे गंगा, और गले में डारे फिर रहे सांप, जाके शीस पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ, भोलेनाथ, Shambho, Shiv Shambho.
0: Shiv Shambho, Shiv Shambho. It's so beautiful. It actually enters your soul. It's so beautiful. Aur aap bilkul dil se ye ga bhi rahe hain. But, you know, since you're a doctor and since you said, you know, health, maa ne jo aashirwad diya, kyunki I at least believe, you know, na se rog hare sab peera, japat nirantar hanumat beera. Is that also your life story? Chanting Lord Hanuman's name destroys all pain, all diseases. That's the message?
1: Yes. Bhagwat Bhakti mein aur Hanuman ji jo hai bahut pivotal role play karte hain. Jaisa ki Hanuman Chalisa mein likha hai, Ram duware tum rakhware hot na agya bin paisare. As an आप उनकी उनकी भक्ति या उनके उनसे परमिशन लिए बिना आप जा नहीं सकते. अनदर लाइन कॉल्ड राम रसायन तुम्हारे पास, आपके पास ही फॉर्मूला है.
0: सदा रहो रघुपति के दासा.
1: फॉलो अप लाइन इज तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो पहले तो आप भक्त होता क्या है ये समझोगे, क्योंकि भक्ति क्या होती है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो। अगर आप भक्ति सीखोगे नहीं तो आप भक्ति में डूबोगे कैसे। तो वो आपके सबसे आइडियल टीचर भी हैं, और चूंकि वो भगवान शिव के स्वयं रुद्र अवतार, 11वें रुद्र अवतार हैं, और जैसा बोला जाता है कि आप निरंतरता में किसी चीज का सुमिरन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान, एज ए निरंतरता में हनुमत पीरा, जैसा ना तो लाइन जहाँ पे वो सुमिरन का शब्द आता है, इसी फॉलोअप लाइन से और देवता चित्र हनुमत से सब सुख सब सुख सह लहे तुम्हारी सुनना जो तुम रक्षक का होगा डरना, और देवता चित्रधारी हनुमत से सब सुख रहे संकट कटे मिटे सब पीरा जो
0: सुमरे हनुमत बलबीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा।
1: तो मेरा बिलीव यही है जी कि सब जो है ना एंड ऑफ द डे नीम करोली बाबा एक ऐसे संत थे, ऐसे महात्मा थे, ऐसे ऐसे हायर बींग थे, हम एक्चुअली उनको अवधूत जिनको बोलते हैं, वो ऐसे ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको आपको एक्चुअली पता करना कि वो कहाँ किस लेवल पे थे आपके बस की बात नहीं है। आप बोल तो सकते हो, आप इमेजिन भी कर सकते हो, लेकिन आपके बस की बात नहीं, आपके रीत से बहुत बाहर है। तो लेकिन वो क्या सिखाते थे, वो क्या समझाते थे, वो क्यों हनुमान चालीसा पढ़ने, सुंदरकांड पढ़ने और सीताराम बोलने, सीताराम लिखने, राम राम लिखने पे ही ज्यादा जोर देते थे, और क्यों हनुमान जी की मूर्तियां लगाते थे, इसी सब में सब कुछ छुपा है। एंड प्रॉब्ली फिल्म हमारा मैंने वही डिकोड करने की कोशिश पूरी फिल्म में की है।
0: वाह वाह। एंड ऑन डे 40 हनुमान अंश द नेट कलेक्शन स्टैंड एट 8.25 crore rupees, इफ आई मे, इफ वी कंपेयर इट टू धुरंधर विच अगेन वॉज अ स्पेक्टेकुलर फिल्म, 2.6 crore is what it got in the same period. Pathan was at 2.55 crore. So is this word of mouth publicity that has a bigger impact, Vishalji, than even those massive promotions?
1: I believe the massive promotions are done. If I can talk about the box office dynamics, what happens that when you have your film, a theatrical run for a week, first week, the film goes to people respond to the film that, okay, it's a good film or it's a average film or it's a great film. And then from there, the word of mouth picks. Hmm. For that first week collection or first week people going to the theater, you need massive promotions. Hmm. And because it's all across the country and we face the problem. I understood that it's not that easy game that you just simply release your film and then you expect people to, you know, just respond to it and then they will start giving you word of mouth. Attention span is so less today, in today's time, that you can't expect people to, you know, go and talk about your film or like all the way they're asking, giving their testimonies. So, no, go watch this film. I will pay for you, this thing. Hmm. So things like that started happening when people found that this film, it's a good film, and then it's reduced to 25 theaters, they are not getting tickets. Mm. And they are traveling from to some, because the locations of those theaters were so odd that people have to travel, some of the people traveled to 200 kilometers to watch the film. Wow. I've met such people.
0: Wow.
1: And this is happening in the second week when they were getting word of mouth and then they are not getting the movie to watch. So the demand surged so much. And the second week, the two other two films, one of the films was not doing well.
0: Correct.
1: And because of which, the theater owners, you know, started opening shows for Hanuman Ansh. And also the Cinepolis, who's the distributor, they were also pitching their film. And from there onwards, it never looked back. It kept growing only. As soon as they opened theaters, people just rushed and then they started watching the film. But in those first 2 weeks, the word of mouth grew. But we could have literally failed and, you know, fell on our nose. But somehow, you know, God saved it. So when you say miracle, yes, there is a sort of a miracle, nothing less than a miracle. But I'd like to thank everyone who has, you know, put their effort to make the reels and make, you know, talked about the film.
0: किसी दिल को छुआ होगा, लोगों के दिलों को छुआ और इतने लोगों ने इसके बारे में बात की एंड क्यूरियोसिटी इंक्रीजेस। अच्छा, इसको अब आप कंपेयर कीजिए, व्हेन यू वेंट टू अपेरेंटली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रिजेक्टेड हनुमान अंश, आई एम श्योर नाउ दे आर रिग्रेटिंग देयर डिसीजन, बट वर यू डिसअपॉइंटेड व्हेन दे रिजेक्टेड द फिल्म?
1: दे डिडंट रिजेक्ट हनुमान अंश, दे रिजेक्टेड द स्टोरी ऑफ नीम करोली बाबा। सो व्हेन आई पिच्ड इट टू एन ओटीटी, which is one of the biggest OTTs. There are only few OTTs and one of the OTTs, I'll say. Hmm. When they rejected, the story of Sri Neem Karoli Baba. And that was very disappointing, not just because it's my story or I took it, or it's a public domain story. But you know about him and you are from India, and why you're behaving so snobbish, and why you have to, you know, say such things. If you just look who all he inspired, and I'm telling that this guy has inspired the Apple's founder.
0: Matlab, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ek bahut lambi suchi hai.
1: And who are you in front of, matlab, who are you in company? I'm not talking about the person. I'm saying whichever company it is, like, it can't be. The Apple, as just as a company, is probably 500 times more wealthier and more, you know, it has more value. And the founder of that company was inspired by this man.
0: Neem Karoli
1: and
0: Baba.
1: The saint. So you just for that, the respect of this comparison which I'm doing right now, to understand where I'm working and what this guy, whom all this guy has inspired. आपको उतने में ही थोड़ा मॉडेस्ट रहना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि नहीं यार, आप तो सिर्फ एक, आप कैसे पॉजिटिव स्टोरी लेके आ
0: रहे हैं। और वहां पर कितनी गाली गलौज चल रही है, और जिस तरह का अभी कंटेंट बन रहा है, नॉट दैट आई एम ड्रॉइंग अ पैरेलल, लेकिन क्या आप ये मानते हैं डॉक्टर साहब कि इस समय देयर इज अ वाइडर ऑडियंस नॉट जस्ट फॉर भक्ति बट टू नो अबाउट द सनातन वे ऑफ लाइफ? हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है? यू नो लाइन्स लाइक यू सेड, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुबरे हनुमत बल बीरा. पीपल वॉन्ट टू नो वॉट इज आर लाइफ ऑल अबाउट, एंड डू यू इंटेंड परसुइंग दिस फर्दर? अगला आपका प्रोजेक्ट क्या है?
1: So I always believed, Gauravji, that there is a immense amount of possibility in Hindi film industry, and we are only catering to, I guess, 5% of them. I guess 5-7% logon ko hi hum cater kar rahe hain. The possibilities of the footfall ki possibility 40 crore logon ki kam se kam Hindi mein hai. Agar aap 40 crore वो, अगर आप धुरंधर हैज एक्चुअली यू नो उसने वो उसको प्रॉपर्ली उसको पकड़ा था, और वो अभी भी मुझे लगता है धुरंधर ने भी अभी कैसे भी 4 गुना पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी है. मेरा हरदम से मानना है कि अगर आप फैमिली कंटेंट नहीं बना रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने ऑडियंस, अपनी जो पॉसिबिलिटी है फिल्म की, उसको आप यू आर रिड्यूसिंग टू 10%. इफ यू आर मेकिंग अ गुड फैमिली फिल्म, यू आर यू नो मेकिंग देम यू नो आदि, बोलते हैं ना कि आदि बनाना होता है, मेकिंग हैबिचुअल ऑफ गुड कंटेंट व्हिच यू कैन गो एंड वॉच इन द थिएटर्स.
0: सपरिवार, मतलब गाली गलौज वाली फिल्म, यू डोंट वांट टू वॉच देम विद योर फैमिली, और लाइक यू सेड, ब्रिंगिंग 3 generations टुगेदर.
1: सो एंड दैट विल रिजल्ट इनटू, एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड एंड ऑलवेज told this, and I, when I'm saying I believe that, I from last 7 years I've been trying to make content which is not negative, which is not vulgar, which is not abusive, which binds people, which is not on the creating, you know, factions, creating, you know, division in the society. And the beauty about our film is that it doesn't antagonize anyone. It doesn't have any negative character in the entire film. There's no villain in the film. There is no three-acted story. There is no big hero. So the beauty about this film is probably it's the simplicity which people are saying, that it is a simplicity which they're liking. And I believe that in that simplicity, there was really relatable content for the families. And that's what worked for them. And obviously, our belief system. So when you say Sanatan and when you say our family system, our culture, we need to, you know, draw the bigger lines. And we say that, you know, don't compare yourself. Do not get into this. There is this possibility of this also. I'm not saying that you should not open up, you know, the cases or problems which are very, very problematic for the society.
0: True.
1: But I'm saying, if you can also, but you'll have to also tell that this is the library we are working with from last 5,000-7,000 years. We have plethora of stories, plethora of magnanimous, you know, stories and content and ideas. You will have to just explore and figure out that how you can, you know, customize it and say it in a way that people love it.
0: So tell me about your next project, because I believe your next project is also spectacularly beautiful concept.
1: So I believe that since the film is about Hanuman Chalisa, and Neem Karoli Baba was also, you know, pressing a lot of people, but Hanuman Chalisa, I am also a Hanuman Bhakt. I also run a Hanuman Chalisa club on Clubhouse from last 5 years.
0: Kya baat hai.
1: So people from worldwide, they come and then chant Hanuman Chalisa over there. Even today the club is working. my Hanuman Bhakti has brought me to Hanuman Ansh and to Srini Kurli Baba. And my Hanuman Bhakti will definitely take me to Tulsidas Ji, because that's the source.
0: Absolutely. Absolutely. How beautiful. So what you're doing, Dr. Chaturvedi, and I must delve on this for a moment. This is Bharat's civilizational knowledge and gyan that you're taking to future generations. Matlab, aap Goswami Tulsidas ka jab unki charcha kar rahe hai, to recently during Operation Sindoor, Air Marshal Bharti, he quoted those immortal lines of Goswami Tulsidas. Ramchandra ji jab Lanka ja rahe the, Sita ji ko lane ke liye, aur samudra rasta nahi de raha tha, to Vinay Namane jaldi jad gaye, teen din beet, bole sako param tab, भाई बिन होए न प्रीत. मतलब इतनी पावरफुल लाइंस है सर, ये हमारे कल्चर के बारे में, हमारी सिविलाइजेशन के बारे में, आप तो उनके पूरे जीवन के बारे में लिख रहे हैं
1: जी. और ये सुंदरकांड की लगभग आखिरी दोहा है, मतलब आखिरी या लास्ट पार्ट वन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो वेरी ब्यूटीफुली तुलसीदास जी नो राइट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, When Vibhishan comes and he tells ke, you can do this and you can do that, and Lakshman is saying dev dev alasi pukara, we jo log devta devta karte hain wo alasi log hote hain, you should just go and you know, we should hame prachai kar dene chahiye, or immediately we should. And Vibhishan batate hain ki aapke kulguru hain samudra jo hai na, inse aap vinti kar lijiye to ye rasta bana denge aapke liye. तो मतलब गए तीन दिन तक भगवान राम मर्यादा का, क्योंकि वो कुलगुरु भी हैं उनके, तो वो उनके मर्यादा के लिए 3 दिन वेट करते हैं. और सबसे खूबसूरत बात यह है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और हनुमान जी और राम, भगवान राम के बारे में जो बात मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, कि वो हरदम एक अपने हर जगह पर उन्होंने क्या बेस्ट हो सकता है, हर व्यक्ति की मर्यादा रखी, छोटे से छोटे व्यक्ति की मर्यादा रखी, और वो कभी छोटा और बड़ा उन्होंने उस तरह से गिना नहीं. और यही सबसे खूबसूरत, लेकिन जब जरूरत आवश्यकता पड़े तो फिर आपको फिर वो
0: धनुष बाण भी उठाया,
1: उठाने पड़ेंगे जी, फिर तो कोई रास्ता नहीं. पर अगर वो सप्रेम निपट सकता है और मर्यादा में रहते आप का अनुसरण करते हुए अगर आप कर सकते हैं, तो नथिंग लाइक इट, इट्स ब्यूटीफुल.
0: और यही बात आप भावी पीढ़ियों तक ले जा रहे हैं, यू टेकिंग दिस टू फ्यूचर जनरेशंस ऑफ भारत. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई मीन, यू आर अ डॉक्टर एंड यू रियली नो व्हाट एल्स द सिस्टम एंड व्हाट इज द वे टू ट्रीट इट एज बेस्ट एज पॉसिबल. डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी, फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन दिस इंडिया फर्स्ट स्पेशल ब्रॉडकास्ट.

0: miracle, a blessing, or hard work being duly recognized and rewarded, or a combination of all these factors, including divine intervention. Hanuman Ansh, a film made with a modest budget of about 2 crore, that earned barely 10 lakh on its opening day, has emerged as one of the most profitable releases of the decade. The returns estimated at nearly 140 times the production cost. Hanuman Ansh, directed by Dr. Vishal Chaturvedi, and stars Shobhanav Satya and Chandan Anand in key roles. The director, Vishal Chaturvedi, Dr. Vishal Chaturvedi, joins me on this special broadcast. And before I bring him into this conversation, let me rattle off some of the statistics that the film world actually considers a dream come true. On day 40, Hanuman Ansh collected a net of 8.25 crore rupees across 9,175 shows. And this brings the film's total India net collection to 231 crore rupees plus. The total India gross for Hanuman Ansh stands at 272.9 crore and counting across 137,549 shows since the release. And it continues to run to packed halls. Amazing. Let me quickly bring into this conversation Dr. Vishal Chaturvedi. Dr. Saab, bohat bohat badhai, shubhkamnaye, many congratulations. Sir, is this your hard work being rewarded, or is this a miracle?
1: सीताराम सबसे पहले धन्यवाद बहुत मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाने के लिए सो आई विल से बिफोर आई गो इनटू वेदर दिस वाज अ हार्ड वर्क और दिस हैड दिस बिकेम अ मिरेकल आई वुड लाइक टू सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पे माय ग्रेटिट्यूड सो इन आवर ऑफिस दिस इज द लाइन इट्स रिटन ऑल दिस व्होमएवर कम्स एंड यू नो पुट्स हिज हार्ड वर्क और मनी और efforts matter. And I will say everyone who has put their effort or efforts to bring people to theaters, because that would have not been possible from our promotional monies. And this happened so that everyone who has made their reels or they talked about the film in their drawing rooms or offices. And they took school kids and everyone, like the kids took their grandparents and grandparents took their kids in one of the screenings when we were like hopping theaters. So I asked how many grandparents brought their granddaughters and sons. So there were some plenty amount of people. And then I asked the reverse question: how many grandson brought their grandfathers or granddaughters brought their grandfathers? So there were plenty of kids. And I said, the circle is completed. That's what I wanted.
0: परिवारों को जोड़ रहे हैं. कितनी सुंदर बात आपने कही. ये परिवार जुड़ रहे हैं, पीढ़ियां जुड़ रही हैं. But tell me this, as a good doctor, आपने नब्स पकड़ ली ऑडियंस की. What inspired you to make a film on Neem Karoli Baba and this name, Hanuman Ansh?
1: So Neem Karoli Baba himself. So after finishing my MBBS, I met with a sort of a miraculous event which I today call at Leela, because miracles happen at instants and Leelas happen over the period of multiple years and decades. Maharaj's, I was doing my first job in Haldwani, and then our car, a few friends, we were traveling to random places near Nainital, and our car suddenly stops at a place, and then when the rain stops and the sunlight comes, because we were not able to see anything before. I open my door and my door opens under Kachi Dham's gate. And that intrigued me so much that it was literally an invitation inside the temple.
0: Wow.
1: And from that day onwards, I've been following this. So I'll say, I believe that Maharaji wanted me to make this film. And he kept guiding me and kept putting me in situations where I had to find a unique way to get out of that situation, and always a unique reaction which came inside my mind, and then I kept following those paths. So I'll completely in a very, very surrender mode, I always say this, that it is Maharaj's guidance under which we made this film and probably where it
0: क्या
1: reached.
0: बात है, पूर्ण समर्पण, मतलब डिवोशन, आस्था और पूर्ण समर्पण ईश्वर को पाने के लिए इससे ज्यादा अच्छा मार्ग क्या हो सकता है. बट टेल मी दिस सर, फ्रॉम द सेट्स टू द म्यूजिक टू द स्टोरी टेलिंग, हाउ मच ऑफ दिस is your spiritual journey, your spiritual experience that went into the making of Hanuman Ansh?
1: So when I was very young, I was 22 or 23, I was going through some basic health issues, and my mother tells me that you need to basically meditate and you need to do dhyana. And my mother has been a constant source of spiritual information all through my life. And she keeps, you know, calling me in every monthly or two monthly, and she will give me a lowdown of what all she got to know about Kriya Yoga and this and Dhyan and Kundalini, all of that. So because of her constant, you know, sort of a unke nirantar prayas se aisa hota raha ki mere andar jo spirituality wo hardam grow karti rahi, aur maine bahut sari cheezein khud bhi dhyan karte waqt jo bhi experience kiya. और वो मुझे कहीं ना कहीं बिलीव कराता है कि देयर इज दिस वर्ल्ड जो आपके अंदर ही है, जो आपके इनसाइड ही है, जो आपके आपके आपके बाहमुखी जहां होके अंतर्मुखी होने से, या अंतर्मुखी होने का मतलब कहने का मतलब नॉट एज अ नेचर, बट आपके अंतर अपने अंतर को देखने को
0: पहचानने में
1: पहचानने आपकी जर्नी जो है ना, वो अंदर भी बहुत बड़ी जर्नी छुपी है जिसको स्पिरिचुअल जर्नी हम बोलते हैं. अमोन, आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारा इस बारे में कॉन्वर्सेशन में मिलेगा.
0: नहीं, बहुत तो, से मेरे मित्र ये बता भी रहे, और माँ सोचिए ना कि हमारी संस्कृति में कौशल्या माँ, देव की माँ, यशोदा माँ, जीजाबाई माँ, माँ की कितनी बड़ी भूमिका है पुत्रों को आगे ले जाने में और उनके उनके जीवन को संवारने में.
1: जी, तो वो उसी उसी लय पे और उसी जो है ना उसी तारतम्य में मैं आगे बढ़ता रहा. और बहुत, चूंकि मैं अलग अलग जगहों पे उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पे रहा हूँ, और बुंदेलखंड में मैं पैदा हुआ, और बुंदेली गीतों से मेरा अपना भी बहुत नाता है. और मैं हरदम जो भी मैं कंटेंट लिख रहा था या मैं डायरेक्ट करने वाला था, उस समय कहीं ना कहीं वो बुंदेल के आलाखंड और बुंदेल की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं इनकल्केट करना चाहता था. और साधु तिवारी जो मेरे मित्र भी है, और सुनील लोधी जिसको मैंने फाइंड किया ऑन इंटरनेट, and I called him to the same office where we are sitting, where I'm talking from, overnight I basically asked him for the songs, and this one I really loved, and we recorded the very next day because he was supposed to go and go back to his hometown by a train. So in half an hour 45 minutes we recorded, and this became the biggest song, I mean, you can say today.
0: And even, can I request you when it comes out, when you sing it, it comes out from your soul, you know. Can you, for the benefit of our viewers, sing the lines of Ma Parvati, Parvati for us?
1: Jab jid pe aa gayi Parvati, Parvati, Parvati, samjhane pahunche saptrishi, saptrishi, saptrishi, kaay zid kar rahi, are kaay khumar rahi, काय जिद कर रही, काय खुमर रही, ऐसे भर के लाने जाके शीस पे गंगा, और गले में डारे फिर रहे सांप, जाके शीस पे गंगा और गले में डारे फिर रहे सांप, इतने सीधे सादे हैं सब कहते भोलेनाथ, भोलेनाथ, Shambho, Shiv Shambho.
0: Shiv Shambho, Shiv Shambho. It's so beautiful. It actually enters your soul. It's so beautiful. Aur aap bilkul dil se ye ga bhi rahe hain. But, you know, since you're a doctor and since you said, you know, health, maa ne jo aashirwaad diya, kyunki I at least believe, you know, na se rog hare sab peera, japat nirantar hanumat beera. Is that also your life story? Chanting Lord Hanuman's name destroys all pain, all diseases. That's the message?
1: Yes. Bhagwat Bhakti mein aur Hanuman ji jo hai bahut pivotal role play karte hain. Jaisa ki Hanuman Chalisa mein likha hai ki Ram duware tum rakhware hot ma agya bin paisare. As an आप उनकी उनकी भक्तियाँ उनके उनसे परमिशन लिए बिना आप जा नहीं सकते. अनदर लाइन कॉल्ड राम रसायन तुम्हारे पास, आपके पास ही फॉर्मूला है.
0: सदा रहो रघुपति के दासा.
1: फॉलो अप लाइन इज तुम्हारे भजन राम जी को पावे, तो अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो पहले तो आप भक्त होता क्या है ये समझोगे, क्योंकि भक्ति क्या होती है वो आप हनुमान जी से सीख सकते हो। अगर आप भक्ति सीखोगे नहीं तो आप भक्ति में डूबोगे कैसे। तो वो आपके सबसे आइडियल टीचर भी हैं, और चूंकि वो भगवान शिव के स्वयं रुद्र अवतार, 11वें रुद्र अवतार हैं, और जैसा बोला जाता है कि आप निरंतरता में किसी चीज का सुमिरन करते हैं, सिमरन करते हैं, तो नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान, एज ए निरंतरता में हनुमत पीरा, जैसा ना तो लाइन जहाँ पे वो सुमिरन का शब्द आता है, इसी फॉलोअप लाइन से और देवता चित्तन धरे हनुमत से सब सुख रहें, सब सुख सह लहे तुम्हारी सन्ना, जो तुम रक्षक का हो डरना, और देवता चित्तन धरे हनुमत से सब सुख रहें, संकट कटे मिटे सब पीरा जो
0: सुमरे हनुमत बल बीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा।
1: तो मेरा बिलीव यही है जी कि सब जो है ना एंड ऑफ द डे नीम करोली बाबा एक ऐसे संत थे, ऐसे महात्मा थे, ऐसे ऐसे हायर बींग थे, हम एक्चुअली उनको अवधूत जिनको बोलते हैं, वो ऐसे ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको आपको एक्चुअली पता करना कि वो कहाँ किस लेवल पे थे आपके बस की बात नहीं है। आप बोल तो सकते हो, आप इमेजिन भी कर सकते हो, लेकिन आपके बस की बात नहीं, आपके रीत से बहुत बाहर है। तो लेकिन वो जो क्या सिखाते थे, वो क्या समझाते थे, वो क्यों हनुमान चालीसा पढ़ने, सुंदरकांड पढ़ने, और सीताराम बोलने, सीताराम लिखने, राम राम लिखने पे ही ज्यादा जोर देते थे, और क्यों हनुमान जी की मूर्तियां लगाते थे, इसी सब में सब कुछ छुपा है। एंड प्रॉब्ली फिल्म हमारा, हमें, मैंने वही डिकोड करने की कोशिश पूरी फिल्म में की है।
0: वाह वाह। एंड ऑन डे 40 हनुमान अंश द नेट कलेक्शन स्टैंड एट 8.25 crore rupees, इफ आई मे, इफ वी कंपेयर इट टू धुरंधर विच अगेन वॉज अ स्पेक्टेकुलर फिल्म, 2.6 crore is what it got in the same period. Pathan was at 2.55 crore. So is this word of mouth publicity that has a bigger impact, Vishalji, than even those massive promotions?
1: I believe the massive promotions are done. If I can talk about the box office dynamics, what happens that when you have your film, a theatrical run for a week, first week, the film goes to people respond to the film that, okay, it's a good film, or it's a average film, or it's a great film. And then from there, the word of mouth picks. Hmm. For that first week collection, or first week people going to the theater, you need massive promotions. Hmm. And because it's all across the country, and we face the problem. I understood that it's not that easy game, that you just simply release your film and then you expect people to, you know, just respond to it, and then they will start giving you word of mouth. Attention span is so less today, in today's time, that you can't expect people to, you know, go and talk about your film or like all the way they're asking, giving their testimonies. So, no, go watch this film. I will pay for you, this thing. So things like that started happening when people found that this film, it's a good film, and then it's reduced to 25 theaters, they are not getting tickets. And they are traveling from to some, because the locations of those theaters were so odd that people have to travel, some of the people traveled to 200 kilometers to watch the film. Wow. I've met such people.
0: Wow.
1: And this is happening in the second week, when they were getting word of mouth, and then they are not getting the movie to watch. So the demand surged so much. And the second week, the two other two films, one of the films was not doing well.
0: Correct.
1: And because of which, the theater owners, you know, started opening shows for Hanuman Ansh. And also the Cinepolis, who's the distributor, they were also pitching their film. And from there onwards, it never looked back. It kept growing only. As soon as they opened theaters, people just rushed and then they started watching the film. But in those first 2 weeks, the word of mouth grew. But we could have literally failed and, you know, fell on our nose. But somehow, you know, God saved it. So when you say miracle, yes, there is a sort of a miracle, nothing less than a miracle. But I'd like to thank everyone who has, you know, put their effort to make the reels and make, you know, talked about the film.
0: किसी दिल को छुआ होगा, लोगों के दिलों को छुआ, और इतने लोगों ने इसके बारे में बात की, एंड क्यूरियोसिटी इंक्रीजेस। अच्छा, इसको अब आप कंपेयर कीजिए, व्हेन यू वेंट टू अपेरेंटली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स रिजेक्टेड हनुमान अंश, आई एम श्योर नाउ दे आर रिग्रेटिंग देयर डिसीजन, बट वर यू डिसअपॉइंटेड व्हेन दे रिजेक्टेड द फिल्म?
1: सो दे डिडंट रिजेक्ट हनुमान अंश, दे रिजेक्टेड स्टोरी ऑफ नीम करोली बाबा। सो व्हेन आई पिच्ड इट टू एन ओटीटी, which is one of the biggest OTTs. There are only few OTTs and one of the OTTs, I'll say. When they rejected the story of Sri Neem Karoli Baba. And that was very disappointing, not just because it's my story or I took it, or it's a public domain story. But you know about him and you are from India, and why you're behaving so snobbish, and why you'll have to, you know, say such things. If you just look who all he inspired, and I'm telling that this guy has inspired the Apple's founder.
0: Matlab, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ek bahut lambi suchi hai.
1: And who are you in front of, matlab, who are you in company? I'm not talking about the person. I'm saying whichever company it is, like, it can't be. The Apple, as just as a company, is probably 500 times more wealthier and more, you know, it has more value. And the founder of that company was inspired by this man.
0: Neem Karoli
1: and
0: Baba.
1: The saint. So you just for that, the respect of this comparison which I'm doing right now, to understand where I'm working and what this guy, whom all this guy has inspired. आपको उतने में ही थोड़ा मॉडेस्ट रहना चाहिए, एरोगेंट नहीं होना चाहिए, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको लगे कि नहीं यार, आप तो सिर्फ एक, आप कैसे पॉजिटिव स्टोरी लेके आ
0: रहे हैं। और वहां पर कितनी गाली गलौज चल रही है, और जिस तरह का अभी कंटेंट बन रहा है, नॉट दैट आई एम ड्रॉइंग अ पैरेलल, लेकिन क्या आप ये मानते हैं डॉक्टर साहब कि इस समय देयर इज अ वाइडर ऑडियंस नॉट जस्ट फॉर भक्ति बट टू नो अबाउट द सनातन वे ऑफ लाइफ? हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है? यू नो लाइन्स लाइक यू सेड, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुवरे हनुमत बल बीरा. पीपल वॉन्ट टू नो वॉट इज आर लाइफ ऑल अबाउट, एंड डू यू इंटेंड परसुइंग दिस फर्दर? अगला आपका प्रोजेक्ट क्या है?
1: So I always believed, Gauravji, that there is a immense amount of possibility in Hindi film industry. And we are only catering to, I guess, 5% of them. It's 5-7% logon ko hi hum cater kar rahe hain. The possibilities of the footfall ki possibility 40 crore logon ki kam se kam Hindi mein hai. Agar aap 40 crore को अगर आप, धुरंधर हैज एक्चुअली यू नो उसने वो उसको प्रॉपर्ली उसको पकड़ा था, और वो अभी भी मुझे लगता है धुरंधर ने भी अभी कैसे भी चार गुना पॉसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी है. मेरा हरदम से मानना है कि अगर आप फैमिली कंटेंट नहीं बना रहे हो तो इसका मतलब है कि आप अपने ऑडियंस, अपनी जो पॉसिबिलिटी है फिल्म की, उसको आप यू आर रिड्यूसिंग टू 10%. इफ यू आर मेकिंग अ गुड फैमिली फिल्म, यू आर यू नो मेकिंग देम यू नो आदि, बोलते हैं ना कि आदि बनाना होता है, मेकिंग हैबिचुअल ऑफ गुड कंटेंट व्हिच यू कैन गो एंड वॉच इन द थिएटर्स.
0: परिवार मतलब गाली गलौच वाली फिल्म, यू डोंट वांट टू वॉच देम विद योर फैमिली, और लाइक यू सेड, ब्रिंगिंग 3 जनरेशंस टुगेदर.
1: सो एंड दैट विल रिजल्ट इनटू, एंड आई ऑलवेज बिलीव्ड एंड ऑलवेज told this, and I, when I'm saying I believe that, I from last 7 years I've been trying to make content which is not negative, which is not vulgar, which is not abusive, which binds people, which is not on the creating, you know, factions, creating, you know, division in the society. And the beauty about our film is that it doesn't antagonize anyone. It doesn't have any negative character in the entire film. There's no villain in the film. There is no three-acted story. There is no big hero. So the beauty about this film is probably it's the simplicity which people are saying, that it is a simplicity which they're liking. And I believe that in that simplicity, there was really relatable content for the families. And that's what worked for them. And obviously, our belief system. So when you say Sanatan and when you say our family system, our culture, we need to, you know, draw the bigger lines. And we say that, you know, don't compare yourself. Do not get into this. There is this possibility of this also. I'm not saying that you should not open up, you know, the cases or problems which are very, very problematic for the society.
0: True.
1: But I'm saying, if you can also, and but you'll have to also tell that this is the library we are working with from last 5,000-7,000 years. We have plethora of stories, plethora of magnanimous, you know, stories and content and ideas. You will have to just explore and figure out that how you can, you know, customize it and say it in a way that people love it.
0: Tell me about your next project, because I believe your next project is also spectacularly beautiful concept.
1: So I believe that since the film is about Hanuman Chalisa, and Neem Karoli Baba was also, you know, pressing a lot of people about Hanuman Chalisa. I am also a Hanuman Bhakt. I also run a Hanuman Chalisa club on Clubhouse from last 5 years. So people from worldwide, they come and then chant Hanuman Chalisa over there. Even today, the club is working. My Hanuman Bhakti has brought me to Hanuman Ansh and to Srini Kurli Baba. And my Hanuman Bhakti will definitely take me to Tulsidas Ji, because that's the source.
0: Absolutely. Absolutely. How beautiful. So what you're doing, Dr. Chaturvedi, and I must delve on this for a moment. This is Bharat's civilizational knowledge and gyan that you're taking to future generations. Matlab, aap Goswami Tulsidas ka jab unki charcha kar rahe hain, to recently during Operation Sindoor, Air Marshal Bharti, he quoted those immortal lines of Goswami Tulsidas. Ramchandra ji jab Lanka ja rahe the, Sita ji ko lane ke liye, aur samudra rasta nahi de raha tha, to Vinay Namane Jaldi Jad gaye teen din beet, bole sako param tab, भाई बिन होए न प्रीत. मतलब इतनी पावरफुल लाइंस है सर, ये हमारे कल्चर के बारे में, हमारी सिविलाइजेशन के बारे में, आप तो उनके पूरे जीवन के बारे में लिख रहे हैं
1: जी. और ये सुंदरकांड की लगभग आखिरी दोहा है, मतलब आखिरी या लास्ट पार्ट वन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो वेरी ब्यूटीफुली तुलसीदास जी नो राइट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल When Vibhishan comes and he tells ke, you can do this and you can do that, and Lakshman ji is saying dev dev alasi pukara, we jo log devta devta karte hain wo alasi log hote hain, you should just go and you know, we should hame try kar dene chahiye, or immediately we should. And Vibhishan batate hain ki aapke kul guru hain samudra jo hai na, inse aap vinti kar lijiye to ye rasta bana denge aapke liye. तो मतलब गए तीन दिन तक भगवान राम मर्यादा का, क्योंकि वो कुलगुरु भी हैं उनके, तो वो उनके मर्यादा के लिए 3 दिन वेट करते हैं. और सबसे खूबसूरत बात यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम और हनुमान जी और राम भगवान राम के बारे में जो बात मैं सबसे बोलना चाहता हूँ कि वो हरदम एक अपने हर जगह पर उन्होंने क्या बेस्ट हो सकता है, हर व्यक्ति की मर्यादा रखी, छोटे से छोटे व्यक्ति की मर्यादा रखी, और वो कभी छोटा और बड़ा उन्होंने उस तरह से गिना नहीं. और यही सबसे खूबसूरत. लेकिन जब जरूरत आवश्यकता पड़े तो फिर आपको फिर वो
0: धनुष बाण भी उठाया,
1: उठाने पड़ेंगे जी, फिर तो कोई रास्ता नहीं. पर अगर वो सप्रेम निपट सकता है और मर्यादा में रहते आप का अनुसरण करते हुए अगर आप कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, इट्स ब्यूटिफुल.
0: और यही बात आप भावी पीढ़ियों तक ले जा रहे हैं, यू टेकिंग दिस टू फ्यूचर जनरेशंस ऑफ भारत. आई विश यू ऑल द बेस्ट. आई मीन, यू आर अ डॉक्टर एंड यू रियली नो व्हाट एल्स द सिस्टम एंड व्हाट इज द वे टू ट्रीट इट एज बेस्ट एज पॉसिबल. डॉक्टर विशाल चतुर्वेदी फॉर ज्वाइनिंग मी हियर ऑन दिस इंडिया फर्स्ट स्पेशल ब्रॉडकास्ट. मेनी थैंक्स.

0: Let's turn from there to tonight's Get Real India story, which comes from Katihar in Bihar, where floods have shut down schools across several parts of Bihar. But in Katihar, one teacher is making sure learning doesn't stop. What's the formula? Well, the classroom has moved from the school to a boat. Take a look.
1: This is a primary school in Raghunathpur village in Bihar's Katihar district, among the worst hit by floods. While the school is shut, a private tutor has taken the initiative to ensure the learning does not stop. Mohammed Sahib conducts classes on a boat.
2: जब कोचिंग में पानी घुस गया, पानी घुसने के 2-3 दिन तक तो हम पढ़ाई ठप कर दिए, लेकिन लगा कि नहीं पढ़ाई रोकने से तो बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। इस वजह से हम सोचे कि चलो बच्चों का हम सब नाव में हिला करके हम लोग क्या करें शिक्षा ग्रहण कराएं बच्चे को। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो भी स्किल रहेगा डेवलपमेंट होता रहेगा। पर ऐसे रुक जाने से क्या होता है कि जो पढ़ाते हैं वो भी भूल जाता है बच्चे।
1: The students claim their homes are also underwater. The school kids say their parents have allowed them to attend classes as the water is shallow.
3: क्यों नाव पे पढ़ाई करते हो डर वर नहीं लगता?
4: नहीं यहाँ कम पानी है और पूरा गांव में पानी हो गया घर में रोड में सड़क में कोचिंग में सब जगह पानी हो गया इसलिए हम लोग यहाँ सर यहाँ लाके पढ़ाते हैं।
3: यहाँ पे किसी तरह का कोई डर वर लगता है?
4: नहीं यहाँ पे पानी कम है इसलिए डर नहीं लगता है।
3: तो फिर ऐसे में सर कितना देर पढ़ाई करवाते हैं?
4: 1-1.5 घंटा।
3: पढ़ने में मन लगता है?
4: यस।
3: बाढ़ है बाढ़ में घर में भी पानी है,
4: है।
3: पढ़ना जरूरी है।
4: हाँ।
1: While the floods have derailed schooling in many parts of Bihar, in Raghunathpur, Mohammed Sahib has kept the light burning. With Bipul Rahul, Bureau Report, India Today.
0: Okay, just about enough time left to leave you with our image of the day. And it's a remarkable visual because the soldier-canine bond taken to new heights quite literally. Take a look at these images. From brutes on the ground to paws in the sky, an Indian Army paratrooper from the Surya Command has carried out a tandem parachute jump with a dog handler and his combat canine, carrying a full combat load. The Army says the feat showcases trust, teamwork and combat readiness, with the canine now trained for operations from the ground to the skies. We leave you with that image. Thanks for watching. Stay well, stay safe. Good night, Shubh Ratri, Jai Hind, Namaskar.